0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: RM2, Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: 6 बजे है। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, शुभ नमस्कार आपको।
3: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। बजट बहसों में कल भाग लेते हुए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने एमएसएम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। उनके अनुसार पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपनी हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण, प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है, जो 2025 में 3.2% पर थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में

0: वेनेजुएला में एक के बाद एक भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई। कई इमारतें ढह गई हैं, लोगों को तुरंत बाहर निकलने के आदेश दिए गए। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा बना हुआ है। वेनेजुएला में राष्ट्रीय छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग घर पर थे जब ये भूकंप पेश आए। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी कुछ पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों के गरजने की भी संभावनाएं हैं। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिल इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:45 पर सूर्योदय, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

चलिए श्रोताओ, 6:04 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब आप सभी सुनने वालों को। गुरुवार का दिन है 25 जून 2026। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सफ़र हम साथ में कल बिताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। खिविया देजांगी के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मौसमा लावानी, एनाश देसे लावानी, कामाउतें फुटबॉल प्ले ग्राउंड स्ट्रीट एनाश देसे कामाउतें, रूट रॉयल बेविट लाबाक रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 25 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से अभी आप एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के साथ करेंगे। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आप सुन सकेंगे आचार्य सकलानी जी को।

0: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
1: ॐ योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणं।

हम दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले

प्रसंग में हम और सहिष्णुता पर चर्चा कर रहे थे कि हमें उचित है कि हम उन परम सुहृद के जो भगवान के जो प्रत्येक विधान हैं उन विधान को मंगलपूर्ण समझ करके सिर झुका करके आदर के साथ और हमें ग्रहण करना चाहिए। हम उन प्रियतम के प्रत्येक विधान के पीछे उनका मंगलमय कोमल वरद हाथ देख करके हमें आनंद से नाच उठना चाहिए। उन प्रियतम का कितना प्रेम है हमारे प्रति कि वे सर्व लोक महेश्वर होकर के भी हम जैसे क्षुद्रों के लिए नित्य मंगल विधान करने पर और लगे रहते हैं, कभी स्नेहमयी जननी की भांति गोद में खेलते हैं और हमको खिलाते हैं, तो कभी परम हित ऐसी विशेषज्ञ डॉक्टर की भांति हमारे सड़े अंग को चीर करके उसमें से जहरीले मवाद को निकाल डालते हैं। यही तो श्रोताओं सुख दुख का स्वरूप है। जो लोग असहिष्णुता मूलक सुख की स्थिति में धन पुत्र परिवार स्वास्थ्य ऐश्वर्य यश मान आदि लौकिक वस्तुओं की प्रचुर प्राप्ति में भगवान की दया मानते हैं और इनके विनाश या अभाव में भगवान का कोप मानते हैं, वे और दया भगवान की दया का रहस्य ही नहीं समझते। निश्चय रखिए श्रोताओं कि जिसमें हमारा मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा, मंगल वही करेंगे। वे हमारा अमंगल कर ही नहीं सकते हैं श्रोताओं, क्योंकि वे हमारे परम सुहृद हैं। हम नहीं समझते हैं हमारा कल्याण किस बात में है, वे समझते हैं, क्योंकि वे क्या हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए उनके प्रत्येक विधान को हमें सर्वथा सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक जो है सानंद सिर चढ़ाना चाहिए। और बड़े महत्व की एवं असली बात तो यह है श्रोताओं कि विधान और विधाता अलग अलग हैं ही नहीं, सब कुछ वही हैं। सुखमय सृजन और भयंकर संहार दोनों उन्हीं आनंदमय और प्राणाराम के दो आनंदमय रूप हैं। वे कभी भयानक भूकंप और कराल काल के रूप में प्रकट होते हैं, तो कभी शांत सुख साम्राज्य और सुशीतल विकास के वेश में सामने आते हैं। ये उन रसिक शेखर की रसिकता है जो उन्हें एक बार पहचान लेता है, वो फिर न तो उनके किसी सौम्य रूप को देख करके चकित होता है, न किसी भयानक रूप को देख करके डरता है। वो सब में सब समय सर्वत्र और आनंदमय को देख करके, सब में उनका कोमल मधुर स्पर्श पा करके नित्य दिव्यानंद में डूबा रहता है। ये आनंद असहिष्णुता मूलक हर्ष नहीं है, विषयों में तो ये आनंद है ही नहीं श्रोताओं, है ना, उनमें तो दुख का प्रतिद्वंदी के और सुख है, और इस आनंद का दर्शन तो उन्हीं को होता है जो विषयों के जगत से, जड़ जगत से और ऊपर उठ करके आत्मा चेतन के जगत में चले जाते हैं। ये द्वंद्वातीत आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है। श्रोताओं असहिष्णुता मूलक हर्ष शोक की परिधि को लांग करके दिव्य आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे फिर एक प्रियतम भगवान को छोड़ करके और किसी को देखते ही नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है ना कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। कह रहे हैं कि जो मनुष्य सर्वत्र मुझ में देखता है और सबको मुझे और मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता है। ऐसे भक्त प्रत्येक सुख दुख के रूप में सर्वदा सर्वथा और सर्वत्र प्राणाराम प्रियतम भगवान के कोमल अरुण चरणों के दर्शन करके उनका निरंतर स्वागत करते रहते हैं, उनका आलिंगन करते रहते हैं, उनको चूमते रहते हैं, न सुख में फूलते हैं न ही दुख में रोते हैं। वे नित्य निरंतर आनंदमय ही और हुए

रहते हैं, यही द्वंद्व सहिष्णुता का सर्वोत्तम स्वरूप है। श्रोताओं, द्वंद्व असहिष्णुता ही दुख है, और दुख को हमने जोर से पकड़ करके रखा हुआ है। यदि हम प्रत्येक द्वंद्व में आनंद की कल्पना करें तो उस कल्पना से ही हमारा दुख बहुत कुछ कम हो सकता है। वास्तव में सब भगवान होने के कारण प्रत्येक द्वंद्व आनंदमय रूप है। हमें निरंतर उस अपार अगाध आनंदाम्बुधि में डूबे और रहना चाहिए। ये याद रखना चाहिए श्रोताओं कि हम आनंद से ही तो उत्पन्न हैं, आनंद में ही रहते हैं, और आनंद में ही हमारा और अवसान होगा। महान आनंद से नित्य परिपूर्ण हैं, आनंद स्वरूप ही है। तो फिर किसी भी अवस्था में, भयानक मृत्यु में भी, हमें आनंद ही और आनंद का दर्शन होगा। भयानक मृत्यु में हमें आनंद का और दर्शन होगा। श्रोताओं, द्वंद्व जनित सुख दुख रूपी दुख सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। अब चौथा है वेग सहिष्णुता। श्रोताओं, अज्ञान और अहंकार के कारण मन में उठने वाला जो काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, बैर, हिंसा, प्रमाद आदि दुष्ट भावों के वेग को रोक लेना और इनके वश में न होना वेग सहिष्णुता है। विषयाशक्ति के कारण समय समय पर इनका वेग बरसात की मौसम की भांति बढ़ी हुई पहाड़ी नदियों के प्रवाह के समान और बहुत ही प्रबल होता है। मनुष्य को बरबस जो है उसमें बहा करके ले जाता है। परंतु श्रोताओं, विचार पूर्वक धैर्य के साथ इनके वेग को सहन करना चाहिए, क्योंकि सहन में ही कल्याण है। और श्री भगवान की कृपा बल का अवलंबन करने पर ऐसा होना कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। श्रोताओं, भगवान ने सारे पापों की उत्पत्ति इन काम क्रोध आदि को ही तो बताया है। इन्हें नरक का द्वार कह करके इनसे बचने की आज्ञा और दी है। भगवद गीता कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनयात्मकः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादे तत्रयम् त्यजेत। कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे हैं। ये आत्मा का पतन करने वाले हैं और हैं, इसलिए इन तीनों का निरंतर परित्याग करते रहना चाहिए। भगवान ने इनके वेग को रोकने वाले पुरुषों को ही और सुखी बतलाया है। भगवद गीता कह रही है कि शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। कि जो मनुष्य और शरीर से निकलने के पहले ही इन काम क्रोधों से के वेग के और इन वेगों को सहन कर सकता है, रोक सकता है, लोक में वही युक्त है, वही और सुखी है। इन वेगों को न सह करके इनके प्रवाहों में बह जाने वाले कितने कितने भारी अनर्थ और अपराध कर बैठते हैं। श्रोताओं, किस प्रकार अंतकाल और अनंत योनि के लिए दुख भोग की कारण रूपा है ना ये दुष्कर्म राशि का मनुष्य संग्रह कर लेता है। इस पर धीरता पूर्वक और विचार करते रहने से श्रोताओं कलेजा कांप उठता है कि वेगों के सहन का उपाय है भोग में वैराग्य और भगवान में अनुराग। यही तो सबसे सरल साधन है। भोग में विराग हुए बिना भगवान में अनुराग हो ही नहीं सकता है, और भगवान में अनुराग होने पर फिर भोग में राग रह नहीं सकता है। जिसने उस पूर्ण काम प्राणाराम सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य की अनंत अचिंत्य निधि भगवान का स्वप्न में भी विचार से भी और दर्शन प्राप्त कर लिया है, वो फिर किस सुख का कामी

0: होगा, वो तो सदा के लिए अपना सर्वस्व उस अखिल सौंदर्य सागर दिव्यातीत दिव्य माधुर्य निधि प्राण प्रियतम हृदय बंधु के चरणों में समर्पण कर देता है। जब कोई दूसरा ही नहीं रहता तब दूसरे किसी के लिए उनमें काम की वासना ही कैसे हो सकती है। जब अखिल विश्व उसे विश्वात्मा परिपूर्ण दिखता है तब विश्व रूप में वही तो प्रकट दिखता है, तब कोई किस पर किसी प्रकार का क्रोध कैसे कर सकता है। कह रहे हैं रामचरितमानस कहते हैं ना, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध। कि ज्ञानी मुनिगण सदा सर्वदा जिनके चरण के लोभी रहते हैं उन अखिल ऐश्वर्य सागर भगवान में जब अनुराग हो जाता है तब फिर अन्य किस लोभनीय वस्तु के लिए लोभ रह सकता है। मतलब यह है श्रोताओं कि भगवान में अनुराग होने पर सबसे विराग अपने आप ही हो जाता है। अनुराग पूर्ण होने के पूर्व ही भगवान के प्रेम महत्व तत्व और शुद्ध सत्व की बातें ही श्रद्धापूर्वक सुनने पर चित्त उनमें अनुरक्त होने लगता है। श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद मधुकर और विषयक चंपक चंचरीक हो जाता है। अर्थात भगवान के चरण कमल की पराग का पान करने वाला भ्रमण विषय रूपी चंपा के फूल पर क्यों बैठने लगा। परंतु भगवान में अनुराग जब तक न हो, जब तक और उस रूप माधुरी का उन्मादीकरण स्वाद न प्राप्त हो तब तक विषयों में दुख दोष देख करके और भगवान में अपर सुख समझ करके विषयों के चित्त और हटने और भगवान में लगाने का साधन तो करना ही पड़ेगा। श्रोताओं आज समय यहीं पर समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 6:19 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, तो बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। और आप आपकी सेवा में प्रसारित है सत्यार्थ प्रकाश के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा की ओर से। ये कार्यक्रम जो है आप सुन सकेंगे डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में।

0: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। सत्यार प्रकाश प्रचार मास के पावन संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारी सभा की ओर से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। सत्यार प्रकाश के दूसरे समुलास में भूत प्रेत का वास्तविक अर्थ। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश के दूसरे समुलास में उल्लेख किया है कि जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव अर्थात आत्मा पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। जन्मांतर का अर्थ है एक जन्म के बाद दूसरा जन्म धारण करना। जन्म और मृत्यु परमात्मा की एक व्यवस्था है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? परमात्मा की व्यवस्था को कोई भी नाश नहीं कर सकता। एक शरीर के परित्याग करने पर जीव अपने कर्मानुसार दूसरे

शरीर को धारण कर लेता है। आयु पूर्ण होने पर आत्मा अपने जरा जर्जर शरीर का परित्याग करके उसी क्षण किसी दूसरे शरीर में प्रकट होता है। स इत पर्यन्नेव पुनर्जायते, यह ऐतरेय उपनिषद का वचन है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार प्राणी मरते ही पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेता है। सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने इन वाक्यों का उल्लेख कर यह बताने का प्रयास किया कि शरीर छोड़ने के पश्चात दिवंगत आत्मा भूत प्रेत नहीं बनती। तथा कथित भूत प्रेत की बातों को स्पष्ट किया और कहा कि मृत शरीर का नाम प्रेत है, मृत शरीर ही प्रेत कहलाता है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लू भट्ट ने प्रेतस्य का अर्थ मृतस्य ही किया है। मृतस्य का अर्थ है जो मृतक हैं या जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, जिसका अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार हो चुका हो, तब उसका नाम भूत होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अमुक नामा पुरुष था, अब नहीं है, वो भूतकाल में था, अब नहीं है। महाभारत के पर्व में कहा गया है कि आयुषो अन्ते प्रहायेदम क्षीण प्रायम कलेवरम संभवति एव युगपत यो नौ नास्ति अंतराभाव। अर्थात पूर्ण आयु होने पर आत्मा अपने जरा व जीर्ण शीर्ण शरीर का परित्याग करके उसी समय किसी दूसरे शरीर में प्रकट होता है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने में उसे क्षण भर का समय भी नहीं लगता। जितने लोग उत्पन्न होते हैं, जीवन धारण करते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या वर्तमान में आकर न रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। भूतस्थ का अर्थ है बीते हुए काल में स्थित। वर्तमान काल से ही भूतकाल और भविष्यत काल का अनुमान किया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में स्पष्ट किया है कि ऐसा ब्रह्मा से लेकर आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है, परंतु जिसको शंका कुसंग कुसंस्कार होता है उसको भय और शंकारू भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि भ्रमजाल दुखदायक अवश्य होते हैं। महर्षि दयानंद ने हम सबको समझाना चाहा कि भूत प्रेत आदि नामों से योनि विशेष की कल्पना धूर्त लोगों ने भोले भाले लोगों को ठगने के लिए एवं अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की हैं। महर्षि दयानंद के समय भी भूत प्रेत की गलत धारणाएं प्रचलित थी। मानसिक रोगों एवं कुछ शारीरिक रोगों को तथाकथित भूत प्रेत नाम से जोड़ दिया जाता था और भूत प्रेत की संज्ञा देने के बाद भय का वातावरण दिमाग और मन में भर दिया जाता था ताकि स्वार्थी लोग उपचार के नाम से धन हरण कर सकें। महर्षि दयानंद ने संकेत किया है कि ऐसे धूर्तों के भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। लोक में भी देखा गया है कि इन लोगों के भ्रम जाल में फंसकर भोले भाले व्यक्ति कितने धन गवा चुके हैं। महर्षि दयानंद जी ने भूत प्रेत की अवैदिक मान्यताओं को भ्रम जाल कहा। उनके अनुसार भूत व प्रेत कोई योनि विशेष डरावनी जीव नहीं। भूत शब्द संस्कृत के भू धातु से बना है जिसका अर्थ है हो चुका, अर्थात जो होकर न रहें उसकी संज्ञा भूत हैं। भूत शब्द पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पांच तत्वों का भी नाम है। महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश के तृतीय समुल्लास में भोले भाले जनता को धूर्तों से बचाने के लिए भूत प्रेत आदि गलत धारणाओं का खंडन किया। जब व्यक्ति अत्यधिक कष्ट में जीवन यापन करता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति मानसिक दुर्बलताओं का शिकार हो जाता है। दुर्बलता से मानसिक रोग उत्पन्न होता है। यदि व्यक्ति उत्तम वैद्य व चिकित्सा विशेषज्ञ का उपयोग लेता है तो व्यक्ति का उपचार सही रूप से हो जाता है और धन भी व्यर्थ में गंवाया नहीं जाता। महर्षि दयानंद जी ने यही बताना चाहा कि रोग को रोगनाशक औषधियों और पौष्टिक तत्वों से ही दूर किया जा सकता है।
जो धूर्त ठग

0: व स्वार्थी व्यक्ति मानसिक रोगों को भूत प्रेत के नाम देकर अपने बनाए हुए ब्रह्मजाल से फंसा लेता है, तो समझो कि वह रोगी व्यक्ति को उपचार के नाम से उसका धन अजगर के समान निगलता चला जाता है। वह रोगी और रोगी बन जाता है। जहाँ तक उन्माद, अपस्मार आदि मानसिक रोगों का प्रश्न है, उनकी चिकित्सा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करना उचित है। इसलिए आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश के माध्यम से भोले भाले मनुष्यों को मिथ्या ज्ञान, भय, कुसंस्कार और शंकारूपी भूत प्रेत के ब्रह्मजाल से छुड़ाने का मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया। महर्षि दयानंद ने मिथ्या ज्ञान और ब्रह्मजाल फैलाने वाले पाखंडियों से दूर रहने का उपदेश दिया है। हम सदैव महर्षि दयानंद जी के प्रति ऋणी रहेंगे। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: चलिए श्रोताओ, कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाई सुबह की ठीक 6:30 बज रही है। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। विदेश मंत्री रितेश रामफल के अनुसार मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपनी हालिया स्टैटिस्टिक बुलेटिन में सार्वजनिक ऋण प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में एक के बाद एक 7.2 और 7.5 अंकों की तीव्रता वाले भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। उनको सुनते हैं।
2: Même si notre pédagogie n'est pas ce qu'elle devrait être, notre communication a encore beaucoup de chemin à faire, mais personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a un ministère aujourd'hui qui lutte pour le pouvoir d'achat. Les subsides, le prix qui ont été réduits, tout, il y a la liste, 3 documents déposés. Donc il faudrait, il faut...

0: को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। उनके अनुसार पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर रविंद्राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। उनको सुनते हैं।
1: Et malheureusement, c'est nous qui avons maintenant cette folle politique et financière d'apporter des changements dans le système de pension afin d'assurer sa pérennité financière pour nos aînés et pour les générations futures. On doit, Madame la Présidente, saluer le courage et la compréhension du Premier ministre. Malgré qu'il le sait que cette décision pèsera lourd sur sa politique de consolidation fiscale et qu'il doit maintenant difficilement défendre ce budget devant les institutions internationales, il a décidé de geler cette réforme sur la pension.
0: National Trade Union Confederation की तरफ से पेंशन सुधार योजना और मींस टेस्टिंग की धारणा की कड़ी आलोचना की जा रही है। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ गोपी ने इस बात की निंदा की कि समस्त जनता को प्रभावित करने वाले इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन गुलाम ने पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-2027 एक स्पष्ट रोड मैप की तरह होना चाहिए जो ये दर्शा सके कि सरकार ने जनता की अपेक्षाओं और मांगों को ध्यान में रखा है या नहीं। नरेंद्र नाथ गोपी ने साथ ही बजटीय फैसलों खासकर संचालन कमेटी से संबंधित फैसलों में कुछ गैर निर्वाचित लोगों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं। Ato Yevalia, Vidima Siboran.
2: Oui, on peut dire mal, il coûte beaucoup bien en solution. Mais pas tout nanyer leur investissement. Pénant pour augmenter qu'est-ce qu'il n'y a de consolidated fund qui paye BRP.
3: निवेश पर कोई बात नहीं की गई है। बीओपी की पेमेंट के लिए कंसोलिडेटेड फंड में पाए जाने वाले पैसे की वृद्धि नहीं हो पा रही है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। हमें कृषि में निवेश करना चाहिए। हमारे आसपास एक समृद्ध मंडी है। कुछ चयनित सेक्टरों में निवेश किया गया। सरकार एयरपोर्ट में 2.7 बिलियन रुपए निवेश कर रही है। फोबाक से हवाई अड्डे तक जाने के लिए 2 बिलियन रुपए निवेश किए जा रहे हैं। जमीन रिहैबिलिटेशन के लिए 100 मिलियन रुपए निवेश किए गए हैं। क्या ये सब मॉरिशस के बजट में योगदान देगा? अंतर्राष्ट्रीय निवेश का होना जरूरी है।
0: बजट 2026-2027 में ब्लू इकोनॉमी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। हालांकि घोषित किए गए कुछ प्रावधान सर्वमान्य नहीं बताए जा रहे। गैर सरकारी संगठन एकोसिड के अध्यक्ष सेबास्टियन सोवाज के अनुसार इस सेक्टर के विकास के लिए किए गए प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि इनमें व्यावहारिक दृष्टिकोण की कमी है। सुमेर अकबर अली।
4: Gouvernement Pérévine avec un projet aquaculture dans lagon. Ce peuplane pour mettre 20 la ferme dans nos bandes lagon. Nous rappelle qu'est ce gros fish.
5: सरकार लगूनों में एक्वाकल्चर परियोजना को अमल में लाने का इरादा रखती है। वो हमारे लगूनों में फार्म्स लगाना चाहती हैं। ऐसे में हम गोफिश मामले को याद करते हैं जब अदालत ने पर्यावरण से जुड़े खतरों के चलते जानकारियों की कमी का उल्लेख किया था। होटलों और नागरिकों के अलावा सी यूजर्स एसोसिएशन को भी चिंता है। आज सिविल सोसाइटी समुद्र में औद्योगिकीकरण संबंधी रणनीति नहीं चाहता है। एक्वाकल्चर से जुड़ी सभी नई परियोजनाओं पर एक मोरेटोरियम की मांग कर रहे हैं जब तक एक सार्वजनिक और आजाद राष्ट्र मूल्यांकन न किया जाए।
4: Tant qu'il y a une évaluation nationale indépendante et publique de ban impact cumulé pas fin réalisé.
0: मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मॉरिशन रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है जो 2025 में 3.2% पर थी। यादव यह वाले विधि मासी बोल रहे हैं।
3: बैंक ऑफ मॉरिशस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस की अर्थव्यवस्था 2026 में भी वृद्धि जारी रखेगी, हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रहने की संभावना है। इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 3% रहने का अनुमान है, जबकि 2025 में ये 3.2% थी। उसी दस्तावेज के अनुसार मार्च 2026 के अंत तक मॉरिशस का

0: सकल सार्वजनिक ऋण लगभग 675 बिलियन रुपए आंका गया है। ये आंकड़ा सार्वजनिक वित्त की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक बना हुआ है। एक अन्य संकेतक रुपए से जुड़ा है, ये अमरीकी डॉलर के मुकाबले बेहतर स्थिति में रहा है, लेकिन यूरो और ब्रिटिश पाउंड सहित अन्य मुद्राओं के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ताओं के लिए महंगाई भी एक महत्वपूर्ण संकेतक बनी हुई है। मई 2026 में ये लगभग 4% के आसपास रही। इसका मतलब है कि कीमतों में वृद्धि अभी भी महसूस की जा रही है, हालांकि ये पहले के अधिक तनावपूर्ण समय की तुलना में कम है।
1: व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा। पोर्ट लुइस में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुईं। उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका मिला। प्रस्तुतियों के अलावा ये गतिविधि भावी सहयोग तथा विकास की नई संभावनाओं के एक संयुक्त मंच के रूप में सामने आई। हर साल 25 जून को विचिलिगो से ग्रस्त लोगों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समस्या के तहत प्रतिरोधक कमियों के चलते त्वचा का डीपिगमेंटेशन होता है और इसका प्रभाव शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है, क्योंकि कई बार इससे पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर विचिलिगो मर्शस फाउंडेशन ऐसे लोगों के समर्थन के लिए कार्यरत है। मुख्य रूप से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही इस फाउंडेशन ने हाल में परिवहन मंत्रालय से विटिलिगो से पीड़ित लोगों को अपनी गाड़ी में टिंटेड शीशे लगाने की अनुमति देने की मांग की। विस्तार जेनियलापा और विधिमासी बुरन के साथ।
0: ये टिंटेड गाड़ियों के लिए एक नियम है और भूमि एवं परिवहन मंत्रालय के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। एक अपवाद पाया जाता है क्योंकि जिन लोगों को विटिलिगो है उन्हें सूरज की किरणों के संपर्क में नहीं आने चाहिए और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है।
1: सूखे की अवधि के दौरान देश में कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। देश का प्रमुख जलाशय माओवाकवा अपनी क्षमता का मात्र 43% ही भरा हुआ है। इस नाजुक स्थिति और लंबे समय से बारिश न होने के कारण CWA जलापूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था हो, वॉल्व का प्रबंधन हो या फिर कॉल सेंटर को मजबूत करना, बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए टीमें हर स्तर पर जुटी हुई हैं। पेश है विस्तार अब्दुल बोला की और करुणा लालू के साथ।
2: 43% ये माओवाकवा का वर्तमान जल स्तर है। ये स्तर चिंताजनक है जो पिछले कई महीनों से वर्षा की कमी को दर्शाता है और पेयजल वितरण नेटवर्क पर भारी दबाव डाल रहा है। प्रिन विलियम्स में स्थिति खास रूप से कठिन है। कई इलाकों में निवासियों को रोज केवल 5 से 6 घंटे ही पानी सप्लाई की जा रही है। ओकुले में हमने CWA की एक टीम का अनुसरण किया जो निवासियों की सहायता के लिए तैनात हैं। इस पानी की टंकी के चालक के लिए कार्य दिवस लगातार लंबे होते जा रहे हैं। थोड़ा आगे उटन में CWA की तकनीकी टीमें वाल्वों का संचालन कर रही हैं ताकि जल का यथासंभव समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
3: Typical,
2: इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण

0: कड़ी CWA का कॉल सेंटर है। इस कक्ष में एजेंट लगातार शिकायतों, हस्तक्षेप मांगों और जलापूर्ति संबंधी मांगों का निपटारा कर रहे हैं। सौंद्रा शॉल ने कहा, ग्राहकों को सुनते हैं ये जानने के लिए कि उनकी शिकायत क्या है। इस असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए CWA ने अपनी सभी टीमों को पूरी तरह सक्रिय रखा है। सुनील गोपाल ने कहा, 5 से 6 घंटे पानी देने का ये जो उपाय किया गया है, यदि इसे ठीक से प्रबंधित कर सकें, स्थिति में स्थिरता ला सकें तो कुछ राहत होगी। वर्तमान में 43% जल स्तर में 15% कीचड़ हैं। ये जल भंडार सितंबर महीने तक के लिए हैं। अधिकारियों ने सामूहिक जिम्मेदारी की अपील की है। बचाया गया हर लीटर पानी जरूरी है, क्योंकि जब तक बारिश महोबाक्वा जलाशय को फिर से नहीं भर देती, तब तक पानी का प्रबंधन मॉरिशस के हजारों परिवारों के लिए एक दैनिक चुनौती बनी रहेगी।
1: सनातन धर्म में गायत्री जयंती का पर्व अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गायत्री के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि गायत्री माता की आराधना से जीवन में ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ये विशेष रिपोर्ट विधि मासी बोलन के साथ।

गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक महाविज्ञान है। इसे महामंत्र कहा जाता है। इसके शब्दों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित है। इसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ये मंत्र अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋषि विश्वामित्र द्वारा हुई थी। ये मंत्र वेदों का सार माना जाता है, इसीलिए इसे वेद माता कहा गया है। गायत्री जयंती के दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं। इस दिन विशेष रूप से यज्ञ, हवन और सत्संग का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया जप और ध्यान व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता को दूर कर उसे मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मनुष्य तनाव और मानसिक अशांति से घिरा हुआ है, गायत्री मंत्र एक अचूक औषधि के समान है। ये एकाग्रता बढ़ाने, बुद्धि को कुशाग्र करने और चरित्र निर्माण में सहायक है। गायत्री माता की साधना का मुख्य उद्देश्य सद्बुद्धि की प्राप्ति है, क्योंकि जब बुद्धि सही दिशा में कार्य करती है तो मनुष्य का जीवन स्वतः ही सुखमय और कल्याणकारी बन जाता है। गायत्री जयंती हमें आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का संदेश देती है। ये पर्व याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और सद्गुण ही मानव जीवन की असली पूंजी है। गायत्री माता की आराधना से न केवल व्यक्ति का कल्याण होता है बल्कि समाज और राष्ट्र में भी सकारात्मकता का संचार होता है। इस दिन हमें अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करने का संकल्प लेना चाहिए।

बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। वेनेजुएला में एक के बाद एक भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई। कई इमारतें ढह गई हैं। लोगों को तुरंत बाहर निकलने के आदेश दिए गए। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा बना हुआ है। वेनेजुएला में राष्ट्रीय छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग घर पर थे जब ये भूकंप पेश आए। उधर कई यूरोप

यूरोपीय देश भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। फ्रांस में कल तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी फ्रांस में 68,000 से ज्यादा मकान बिजली आपूर्ति से वंचित रहे। फ्रांस के आधे से ज्यादा शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी कुछ पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों के गरजने की भी संभावनाएं हैं। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:45 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। राज्यसभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। पर्यटन जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पियन ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मोशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। विदेश मंत्री रितेश रामफल के अनुसार मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिले हैं। साथ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वेनेजुएला में एक के बाद एक 7.2 और 7.5 अंकों की तीव्रता वाले भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिर हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शुभ समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए. नंबर 59 डोंट्रोकास्टो गली पोर्ट लुइस में, नंबर 59 डोंट्रोकास्टो गली पोर्ट लुइस में 73 साल के 73 years old श्री त्रिलोक खेदू, श्री त्रिलोक खेदू जो सुरेश नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे के मकान नंबर 59 डोंट्रोकास्टो गली पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. लक्ष्मण रोड ब्रिजेवियाजिया में, लक्ष्मण रोड ब्रिजेवियाजिया में 69 साल की 69 years old श्रीमती दमंती हृदय, श्रीमती दमंती हृदय पिताशी नाम तनकु जो मौसंगातु नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे. इनके बेटे श्री लक्ष्मण हृदय के मकान लक्ष्मण रोड ब्रिजे व्याजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोंबों जो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में इन इन स्थानों में यज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया गया है। गुरुवार 25 जून को बुआशेरी आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 3 शाम के 5 बजे, वेदानंद भगवान कोटेज ब्रांच शाखा नंबर 7 शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और वेद माता मंदिर पृथ्वीपा के मोताई ब्लाउश शाखा नंबर 22 और शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि के 7:30 बजे तक। सत्यार्थ प्रकाश के मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस गुरुवार 25 जून को फुलबासिया आश्रम शुमेघ्रन्य में दोपहर के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नू त्रावाई नू लावेनिया एग्रीकल्चर की सिक्तिया में नीति एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जन रॉयल रोड

जन पॉइंट रेजान ग्रैंड गोब में पावल जला चार फीमेल वालेट्स खोजता जिनका 3 से 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और खोजता दुगो फीमेल वेट्रेसेस जिनका 3 से 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर हौची पहुंच जाइया न त टेलीफोनी सगवा करे 204-91-91 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 26 जून 2026। हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में किस विच स्पा एंड सैलून लिमिटेड जन रॉयल रोड लावेंचर में पावल जला दुगो ब्यूटिशियंस खोजता जिनकर दो बार इसके लिए एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52-51-77-42 नत हौजे पहुंच जाइया एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 27 जून 2026। ऑटोमेटिव के सेक्टर में गाराज ऑटो रिपेयर लिमिटेड जन शिवाला रोड मोगो में पावल जला दुगो मेल मोटो व्हीकल मैकेनिक्स खोजता जिनकर दो बार इसके एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 57-87-29-19 न अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है krishnaramphal@gmail.com। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। क्लीनिंग सर्विसेज के सेक्टर में ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड जन रॉयल रोड काशी पोर्टविस में पावल जला 34 फैक्ट्री ऑपरेटर्स खोजता जिनका सीपीयू बाटे और खोजता 10 गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स जिनकर वैलिड गुड्स व्हीकल लाइसेंस बाटे और खोजता 10 प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स। एप्लीकेशन करे खातिर लेंदी से सुकलेख फजीर 8 बजे से सांझ के 4:00 लेख टेलीफोनी करिया 207-2000 न सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है humancapital@dcs.mu। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में सादेक सेक्रेटर या एगो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर ICT खोजता साथ में खोजता एगो ऑफिसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स जोन कांजिदा एतेरिसे हवन उलोक के चाहेला अपन एप्लीकेशन एगो सॉफ्ट कॉपी में ही वाने की वर्ड फॉर्मेट में विदा करे के ऊ भी शुक्रवार 26 जून 2026 दोपहर के 2 बजे लेख ई पता पर द सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड साथ में ई ईमेल एड्रेस पर विदा कर दी है mofoc@govmu.org। याद रखिया कि सादेक एप्लीकेशन फॉर्म जन बाटे निमन से चाहेला भर के साइन करके और एगो कवरिंग लेटर जन में तोहर क्वालिफिकेशन तोहर एक्सपीरियंस तोहर कॉम्पिटेंसीज सब चाहेला होए के हाई वैकेंसी के लेके और तोहर जन अपडेटेड करिकुलम वीटे जन बाटे उ नई चाहेला 5 पेजेस से जस्ती होए के और चाहेला तोहर डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जन बाटे सब सर्टिफाइड कॉपीज चाहेला होए के जस्ती जानकारी खोजबा त मिनिस्ट्री के ई वेबसाइट विजिट करिया http://foreign.govmu.org और सादेक सेक्रेटरिया के वेबसाइट है https://www.sadec.int। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 26 जून 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ तो ये भी सुनते चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एगो EEG टेक्नीशियन खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.govmu.org/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 29 जून 2026। मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ एंड वेलनेस एगो बायोमेडिकल इंजीनियर और सीनियर बायोमेडिकल इंजीनियर हेल्थ खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.govmu.org/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026।

Your finance, corporate and business registration department, ego manager XBRL Kojata, aplikasokari khatir, e website visit kariya. https://pse.gov.org/ aur aplikasokari ke antim tarikh 30 June 2026. साथ में पुलिस डिपार्टमेंट एगो केटरिंग सुपरवाइजर खोजता और अप्लिकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://pse.gov.org/ और अप्लिकेशन करे के अंतिम तारीख 6 जुलाई 2026 प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में प्रोविडेंस के रीजन खातिर एगो हाउसमेट खोजल जाता अप्लिकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया ईआईसी काचे मिलिटेर के नंबर पर 435-55-30 or 435-33-52 ये भी सुनते चला कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ काठोबोन के सहयोग से बीफे 25 जून के फजीर 9:30 से सपहर के 3 लेक एगो जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर आयोजित करा जाता जहां पर ही प्राइवेट कंपनीज साथ में पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस एकेडमी ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन करियर्स गाइडेंस सर्विस मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग MITD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काउंसिल मानी के HRDC हजा पर ही रहियंसा जस्ती जानकारी खोजबा तो जन हेल्प डेस्क है 86003 कॉन्टेक्ट करिया न तो जन ईमेल एड्रेस है उहा mauritiusjobs@govmu.org ते ए रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाई नू लावेनिया

स्टूडियो की घड़ी में 7:11 हो चुके हैं। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। वैसे सुबह सवेरे 6 बजे से आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर से हम आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाली हैं। और आज है गुरुवार का दिन और 25 जून 2026 में हम कदम रख चुके हैं। तो आज का दिन आपके लिए खुशगवार हो, हमारी यही कामना है। सुबह की ताजगी, मन की शांति और ऊपर वाले का नाम, यही एक सुंदर दिन की सबसे अच्छी शुरुआत है। तो चलिए श्रोताओं, ज़्यादा देर न करते हुए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं चिंतन के साथ। और चिंतन जो है आप सुन सकेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति।

0: मिट्टी में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती है। सोने के 100 टुकड़े कीजिए, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। याद रखिए, भूल होना प्रकृति है, भूल को मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्राजील, मोरक्को, स्विट्जरलैंड और कनाडा नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई हुई। ग्रुप सी का टॉपर बना ब्राजील। ला सिलेसाओ ने 3-0 से स्कॉटलैंड को रफा दफा किया। विनीसियस जूनियर का डबल और माथ्यूस कुन्हा का एक गोल। इसी ग्रुप में मोरक्को ने आईटी को 4-2 से हराया। फर्स्ट हाफ में स्कोर 2-2 था। अशरफ हकीमी, साइबागी, रहीमी और यासीन स्कोर कर पाए मोरक्को के लिए, जबकि 52 साल बाद 52 ईयर्स लगे आईटी को वर्ल्ड कप में गोल स्कोर करने के लिए। एक ऑन गोल गोलकीपर बुनू का रहा और एक विलियम इजिडो का। मोरक्को ग्रुप का रनर अप बनकर क्वालिफाई हुआ। आईटी को अलविदा कहना होगा, जबकि स्कॉटलैंड को संडे तक इंतजार करना होगा क्वालिफाई होगा या नहीं। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया और ग्रुप में टॉप पोजीशन ले पाया। कनाडा भी क्वालिफाई है। पहली बार के लिए कनाडा की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज पार कर पाई। इसी ग्रुप में बोस्निया ने 3-1 से कतर को हराया। कतर का वर्ल्ड कप सफर यहीं पर पूरा होता है। बोस्निया के पास 4 अंक है। बेस्ट थर्ड प्लेस से नॉकआउट राउंड में जाने के लिए उम्मीद है, पर इंतजार करना होगा क्योंकि 12 ग्रुप से केवल 8 बेस्ट थर्ड प्लेस स्पॉट हैं। ग्रुप ए में इसी समय मेक्सिको चेक रिपब्लिक को 2-0 से हरा रहा है और साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया को 1-0 से। अगर नतीजा यही रहा तो मेक्सिको तो पहले से ही क्वालिफाई है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा अगले राउंड के लिए। मेक्सिको के पास अभी 10 अंक है, फिर साउथ कोरिया के पास 4 अंक, चेक रिपब्लिक के पास 2 अंक, साउथ अफ्रीका के पास 4 अंक। साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका दोनों बराबर पर है। अभी मैच जारी है। पूरा नतीजा आपको 7:30 बजे देंगे RN2 पर। आज के मैच ग्रुप ई में मिडनाइट किक ऑफ, कुआसाओ आइवोरी कोस्ट, इक्वाडोर जर्मनी। जर्मनी 6 अंकों के साथ क्वालिफाई है। आइवोरी कोस्ट के पास 3 अंक हैं, इक्वाडोर के पास 1, कुआसाओ के पास 1। मतलब सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए आज के मैच निर्णायक डिसाइसिव होंगे। फिर कल सुबह 3 बजे एक ही समय ग्रुप एफ में जापान वर्सेस स्वीडन, ट्यूनिजिया वर्सेस नेदरलैंड्स। ये ग्रुप टाइट है क्योंकि नेदरलैंड्स, जापान के पास 4-4 अंक हैं, स्वीडन के पास 3 अंक हैं। और कल सुबह 6 बजे ग्रुप डी में पाराग्वे ऑस्ट्रेलिया, जो जीतेगा क्वालिफाई टर्की यूएसए। यूएसए पहले से ही क्वालिफाई है 6 अंकों के साथ। ऑस्ट्रेलिया और पाराग्वे के पास है 3-3 अंक, तुर्की के पास 1 भी अंक नहीं है। ट्रांसफर न्यूज, वेस्ट हैम यूनाइटेड ने माथ्यूस फर्नांडिस के लिए टोटनहम हॉटस्पर को 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रेस में है। दोनों क्लब बोर्नमुथ के एलेक्स स्कॉट को भी टारगेट कर रही हैं। आर्सेनल भी एलेक्स स्कॉट को साइन करना चाहता है। एलियट एंडरसन के लिए मैनचेस्टर सिटी ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर फी देने के लिए तैयार है। एथलेटिको मैड्रिड अपने स्टार खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज को ला लीगा राइवल्स बार्सिलोना और रियल मैड्रिड से नहीं बेचना चाहता। ऐसे में आर्सेनल का रास्ता खुल जाता है, पर दाम बहुत गर्म होगा। और क्रिकेट में वीमेन T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड की टीम। आज टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इनके ग्रुप में दोनों के पास 4-4 अंक हैं। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, कल ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। मोरक्को की भी जीत हुई, मोरक्को क्वालिफाई, स्कॉटलैंड को इंतजार करना होगा। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: स्पोर्ट्स न्यूज, तो चलिए श्रोताओं, अभी आप स्पोर्ट्स संबंधित जानकारियां अरविंद के साथ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए सुबह का नजराना कार्यक्रम आपके लाए हैं, चंद पुराने गीतों के साथ इसे हम सजाने वाले हैं।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: झलकियां
1: झलकियां चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चलिए हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस समय आप सुन रहे हैं सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद पुराने गीत आपकी सेवा में 8 बजे भोजपुरी में आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के बाद चंद द्वैत्स गाने आपके नाम हम करेंगे। 8:50 पर हमारी धरोहर ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति।

0: एक भोजपुरी गीत आपके लिए। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ 10 बजे एक बार फिर से आप समाचार सुन पाएंगे, और इसके बाद भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे संत कबीर मंदिर की तरफ से। और 11 बजे एक बार फिर से समाचार पढ़े जाएंगे उर्दू कार्यक्रम, इसके बाद सायदा की पेशकश में तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरिशालिनी के साथ दिन के 12 बजे, 12:30 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम सुंदरम के साथ प्रीति लेकर आएगी, मराठी भाषा में कार्यक्रम 1:30 बजे, दोपहर के 2 बजे आप मंदारिन कार्यक्रम जिनके साथ सुन पाएंगे, रंगारंग ये कार्यक्रम 2:30 बजे आप अमिता के साथ सुन सकेंगे, रत्ना लेकर आएगी 2:45 पर आपकी पसंद कार्यक्रम, दोपहर के 3 बजे के समाचारों के उस पार आपके लिए आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। भक्ति सागर ये कार्यक्रम सुमिता के साथ, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा ये कार्यक्रम आप डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे, शाम के 5 बजे सदाबहार गीत पूनम के साथ, 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन, इसके बाद चंद फिल्में गाने, 6:30 बजे मंदारिन में कार्यक्रम दाविद के साथ, तमिल भाषा में कार्यक्रम आप रात के 7 बजे पुवाना के साथ सुन पाएंगे, वर्षा लेकर आएगी तेलुगु भाषा में कार्यक्रम 7:30 बजे, 7:50 पर गीत गंगा ये कार्यक्रम मराठी भाषा में शीर्ष के साथ, भजले प्रभु का नाम देवना की प्रस्तुति में रात के 8:10 पर, 8:40 महफिल शब उर्दू कार्यक्रम समीर के साथ, किरण लेकर आएगी कार्यक्रम भोजपुरी तर्क रात के 9 बजे, और रात के 11 बजे सुनहरे पर चंद पुराने गाने गिनशा के साथ, रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चंद प्यारे प्यारे गीत।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
2: झलकियां,
3: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
2: झलकियां,
1: झलकियां।

वैसे श्रोताओ, हमारी जिंदगी में रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हौसले और विश्वास के साथ चलना पड़ता है। ऊपर वाले की कृपा और अपनों का साथ, यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग, ये रेडियो मॉरिशस है, ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम आपके नाम।

श्रोताओं, कहते हैं जब भी कोई भी पुराना गीत बजता है, यादों की किताब का कोई ना कोई पन्ना खुद ब खुद ज़रूर खुल जाता है। तो चलिए, गीतों का ये सुहाना सफ़र आपके नाम, अगली भेंट में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत। आप ज़रूर इस गीत को पसंद करने वाली हैं।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओ, 7:40 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये है सुबह का नजराना कार्यक्रम चंद पुराने गाने आपके नाम। कहते हैं ऑल इज गोल्ड, पुराने गीत वक्त के साथ नहीं बदलते, बल्कि हर सुनने वाले के दिल में नई यादें ज़रूर बना जाती हैं।

श्रोताओ, किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे उसके अपने रूप में स्वीकार करता है। प्रेम की भाषा सिर्फ दिल ही समझ सकता है, और जिसकी गूंज शब्दों से नहीं अधिक गहरी होती है। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट आप सभी म्यूज़िक लवर्स के लिए।

जीवन की सबसे बड़ी दौलत खुशी है श्रोताओं, जिसे पाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए दिल होना चाहिए। तो चलिए एक अंतिम नजराना आपके लिए, कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं भोजपुरी में, आप समाचार सुनेंगे, समाचारों के बाद वापस मिल रही है।

अपन घर ही मिला ला जा फजीर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेश भा भोजपुरी के समाचार। राष्ट्रीय सभा में काल बजट बहस के दौरान एक खिलाफ फिरों से स्टेट एज पेंशन के मुद्दा केंद्र में रहल जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करे के विचार के विरोध करलन। हालांकि ओ मर्शन लोग के खरीद शक्ति बेहतर करे खातिर व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय दिनी से लागू करल जाए होला सब कदम की सराहना कर ले हवन। बजट बहस में भाग लेवे बखत काल विदेश मंत्री रितेश रामफल MSM की कड़ा आलोचना करलन। बोलन की मौजूदा सरकार के गल सरकार देने से छोड़ल गल एगो नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिलल बाटे। उनकर अनुसार गल सरकार कई गो ऐसन कदम उठले रहल जिमें वो खाली सत्ता परी बनल रही। वो एकर संगे ही बोलन कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय बकिर आवश्यक फैसला लेवे के साहस रखेलन। नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन देने से पेंशन सुधार योजना आर मीन्स टेस्टिंग के धारणा की कड़ा आलोचना करल जाता। काल एगो प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ गोपी ई बात के निंदा करलन की समस्त जनता के प्रभावित करे होला ई अत्यंत संवेदनशील मुद्दा पर ही प्रधानमंत्री पर्याप्त स्पष्टता नहीं दे रहे हवन। उबोलन की बजट 2026-2027 एगो स्पष्ट रोड मैप नियन हो के चाहत जे ई दर्शावे सकी कि सरकार जनता की अपेक्षा और मांग के ध्यान में रख ले है कि नहीं। नरेंद्र नाथ गोपी एकर संगे ही बजटीय फैसला खासकर संचालन कमेटी से संबंधित फैसला में कादगो गैर निर्वाचित आदमियों की भागीदारी पर भी सवाल उठैले हवन। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर बाटे बकीर 2026 खातिर एकर में हल्का कमी आवे के अनुमान बा। बैंक ऑफ मॉरिशस अपन हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च

0: सार्वजनिक ऋण प्रमुख विदेशी मुद्रा के मुकाबला में मर्शन रुपया की धीमा वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन के उल्लेख कर लेवा ये बरिस खातिर आर्थिक वृद्धि 3% पर रहे के अनुमान बाटे जे 2025 में 3.2% पर ही रहल। व्यापार के बढ़ावा देवे के और स्थानीय महिला ठेकेदार लोग के कौशल के प्रदर्शन करे के ई नेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल दिनी से काल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग आर नेटवर्क इवेंट के उद्देश्य रहल। पोर्ट लुइस में आयोजित ई बैठक में विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय महिला ठेकेदार लोग एकत्रित होल हवन जा उ लोग के अपन पैदावार आर सेवा प्रस्तुत करे के और एक संग ही अपन पेशेवर नेटवर्क के विस्तार करे के मौका मिलल। दूसर देश के खबर में वेनेजुएला में एक के बाद एक भूकंप के दुगो बड़ा झटका महसूस करल गल। रिक्टर पैमाना परी पहला की तीव्रता 7.2 और दूसरका के 7.5 के मापल गल रहल। एकर से कई गो इमारत ढह गल बा। आदमी लोग के तुरंते बाहर निकले के आदेश देवल गल। अधिकारी लोग के अनुसार मरे होला लोग के संख्या 10,000 ले पहुंचे के खतरा बनल बाटे। मलबा से आदमी लोग के निकाले की कार्यवाही चलावल जाता। वेनेजुएला में राष्ट्रीय छुट्टी होवे के कारण से जस्ती ले जस्ती जना घर पर रहलन जा जब ई भूकंप पेश आयल। त ई रहल भोजपुरी के समाचार। तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मनी की खबर सुना जा। नंबर 59 डोंटोकास्टो गली पोर्ट लुइस में 73 बरिस की 73 जों के श्री त्रिलोक केदू जे सुरेश नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर घर नंबर 59 डोंटोकास्टो गली पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसाल इनकी श्मशान भूमि ले जाल जाए। लक्ष्मण रोड ब्रिजेवियाजिया में 69 के 69 के श्रीमती दमंती हृदय पिताशी नाम तानकू जे मौसंगातु नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के ग्यारह बजे उनकर बेटा श्री लक्ष्मण हृदय के घरे लक्ष्मण रोड ब्रिजेवियाजिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोझ के श्मशान भूमि ले जाल जाए। लॉट नंबर 18 मोंसेल मवी ऑगस ऑर्जी में 82 के 82 के कुमारी इंद्रावती राम साहा जे गुमान नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के बारह बज के आधा उनकर रिश्तेदार श्रीमती गोविंदामा गोविंद के घरे नंबर लॉट नंबर 18 मोंसेलमा वीआरएस और जिसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। एसएसओ ले नौसेनाल में 45 के 51 के श्री रोदी सिरतन जे को के नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के ग्यारह बजे उनकर घरे एसएसओ लेन औसेनाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बमोशों के श्मशान भूमि ले जाल जाए।

Kariex Airport Road. Plenmanio si utakian tim sanskar khatir. Ho ekish mashan bhumi le jal jai. शोक में डूबा लिसा परिवार लोग के संगे हमने की संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए श्रोताओं, 8:16 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। रिविया डिजाउंगी के रहने वाले निवासों को, जिनमें है मौसल मौलावानी, एनाश डेसे लावानी, कॉम मागे, फुटबॉल प्लेग्राउंड स्ट्रीट, एनाश डेसे कॉम आउटे, रोट रॉयल बेविट लाबारक रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 25 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए श्रोताओं, इस समय से लेकर 8:50 पर आपके लाए हैं चेन्नई डुएट्स गाने, और कार्यक्रम की पहली डुएट्स में आप सुन सकेंगे नितिन मुकेश और साधना सरगम की मीठे आवाज़ों में फिल्म खुद गर्ज का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तो चलिए गीत को हम शुरू कर रही हैं।

तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा संगीत अभी आपने सुना। और ये मूवी जो है 1987 की बनी हुई है। फिल्म का नाम है खुद गर्ल्स। रिश्तों की असली पहचान मुश्किल समय में होती है, और यही संदेश हमें खुद गर्ल्स जैसी फिल्में खूबसूरती से हमें देती है। तो चलिए गीतों का ये खूबसूरत सफर से हम आगे बढ़ाएंगे, और अगला डुएट जो है आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे। फिल्म का नाम है हर जाई।

चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत संगीत अभी आपने सुना। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्तों की खूबसूरती विश्वास में होती है, और जब विश्वास मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। तो चलिए अगली भेंट में सुनी निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

0: छोटा, जिंदगी के कुछ रिश्ते हमें हंसना सिखाते हैं, कुछ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, और कुछ रिश्ते हमें खुद को समझने का मौका भी देते हैं। कभी अलविदा न कहना, बस ऐसी ही एक कहानी है हर किसी की जिंदगी में। वैसे रिश्तों की असली खूबसूरती उन्हें निभाने में है, और प्यार की असली ताकत एक दूसरे को समझने में। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। खूबसूरत गीतों का ये सफ़र, इसे हम जारी रख रहे हैं। फिल्म आंटी का ये सदाबहार गीत आज भी लोगों को बहुत ही पसंद है।
1: परसों पागलों की दुनिया निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: कभी नीम नीम कभी शहद शहद, हमारी जीवन की सच्चाई। 8:50 हुए हैं। चलिए ये श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चंद डुएट्स। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। हमारी धरोहर ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा। आज हमने भाषा पर बतियाब जा, भाषा जोन हमने के विरासत के सबसे महत्वपूर्ण वाहन है। लगभग 7,000 भाषा बा दुनिया भर में, और लगभग 2,500 इमें से खतरा में बा, जहां आगे चल के ई भाषा सके मिट जाए। काहे कि ई सब भाषा बोले होला लोग अब कमती होवत हवन सा। आंकड़ा के अनुसार हर 15 दिन में एको भाषा लुप्त हो जाला, और बोलल जाला कि जे भाषा गल त संस्कृति गल। भाषा के खो देला एकर पीछे बहुत वजह बा। दुनिया भर में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव जन होवता, दशकों से ओकर असर भाषा पर भी पड़ता। यूनेस्को ई भी बोलेला कि एगो भाषा के कम 10,000 जना जे बोलियन सा त ऊ सकी दूसरा पीढ़ी तक पहुँचे, और जे नहीं त ऊ सकी मरे लगे। हमने के भोजपुरी भाषा एगो ऐसन भाषा है जोन हमने के पूर्वज लोग के बोली रहल, उ लोग के भाषा रहल, और सब कोई भोजपुरी में ही बोलत रहलन जा। देश में उ लोग के जमाना में हियाँ तक कि मूला में काम करे होला जोन किरियोल समुदाय रहल, साहेब लोग रहलन सा। और फिर आप जाने लग कि हर ढाका में, फिर हर गांव में एगो चिन्वा बुतिक रहल, तो उस सब चिन्वा लोग भी भोजपुरी बोले के सीख कर रहलन जा। लेकिन धीरे धीरे सब कोई भोजपुरी छोड़ के दूसर दूसर भाषा बोले के शुरू कर देलन जा। और सरकार ई समस्या से निपटे खातिर जल्दी जल्दी कितने ऐसा संस्था के स्थापना करलन जहाँ पर सकल जाए भोजपुरी जैसन बाकी पूर्वी भाषा के संरक्षण करे। आज देखत हवा कि हमने के देश में जितना भाषा बोलल जाला उ सब के एगो स्पीकिंग यूनियन बा, और फिर कितने सांस्कृतिक केंद्र भी बा ई सब भाषा और ओकर संस्कृति के बढ़ावा देवे खातिर। अब आप्रवासी घाट के शोध के अनुसार हमने के जोन बुजुर्ग लोग रलन जा, और उ लोग के जोन सीधा संपर्क रहल गिरमिटिया मजदूर लोग से, त उ लोग बोलेलन जा कि भाषा उ लोग ऐसन बोलत रलन जा जोन हमने के आज

0: के भोजपुरी से अलग रहल। एगो ऐसन भोजपुरी जोन भारत से सीधा निकल के मॉरिशस आ रहल, लेकिन आज मॉरिशस में जब अलग अलग समुदाय के बीच हमनी जिए लगली सा, तो वो हर एगो भाषा के प्रभाव हमनी के भाषा पर पड़ल और हमनी के भोजपुरी के प्रभाव हर एगो दूसर भाषा पर पड़ल। और यही है एगो भाषा के खूबसूरती कि वो अपन रास्ता में जोन कुछ मिलेला ओके आत्मसात कर ले चलेला। आज हमनी के भोजपुरी हर एगो दूसर भोजपुरी जोन दूसर देश में बोलल जाला ओकर से अलग बा। और हमनी के भोजपुरी के साथ साथ आज मॉरिशस में सबसे जस्ती बोलल जाए होला किरियोली भाषा में भी देखत है जा कि भोजपुरी के कितने शब्द अनगिनत शब्द चलल बा। तो यही है भाषा के खूबसूरती और एके बोलते रहिया तभी जाके आपके भाषा जीवित रही। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: चलिए श्रोताओं, एक भोजपुरी गीत आपके नाम हम करेंगे। कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। उस समाचारों के उस पार जो है आप आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ सुन पाएंगे। मिलेंगे 10 बजे भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब आप थोड़ी देर में अदिति से समाचार सुनेंगे। नमस्कार अदिति।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पियर ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मर्शनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। बजट बहसों में कल भाग लेते हुए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने एमएसएम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। उनके अनुसार पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण, प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मॉरिशन रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है जो कि 2025 में 3.2% पर थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कई यूरोपीय देश भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। फ्रांस में कल तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी फ्रांस में 68,000 से ज़्यादा मकान बिजली आपूर्ति से वंचित रहे। फ्रांस के आधे से ज़्यादा शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आगे दीजिए नमस्कार।
0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
3: तेर जा मौसी, तेर जा उतरे दा मौसी, उतरे दा जगह नहीं बा मौसी, विश्वा में जगह नहीं बा।
4: ले ला बाबू, ले ला, तू घंटा से खड़ा है, खरे खरे ले ला। We'll be right back.

0: आज की चर्चा।
1: आप सभी को हमारी ओर से, साथ में टेक्निक पर यूसुफ और प्रोडक्शन सहायिका उरुसा और हमारे जो प्रोड्यूसर जिनेश, सबकी ओर से नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर हमारा साथ देंगे। वैसे आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हर घर से जुड़ी हुई समस्या पर चर्चा करेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कीमत यानी कि प्राइसेस। तो आज के समय अगर देखा जाए तो सेहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सभी के लिए, लेकिन क्या दवाइयाँ हर आम आदमी की पहुँच में हैं या बढ़ती कीमत लोगों के बजट को मुश्किल में डाल रही है? तो इसी विषय पर ज़्यादा खुलासा देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में हमारे कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से हमारे दो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनसे आप लोग बड़ी भांति परिचित हैं। आप हैं श्री विशाल सिंह लालमन जी और श्री सूरज लाल बिहारी जी। आप दोनों का स्वागत हम करते हैं, नमस्कार। और जैसे कि अभी हमने कहा कि आज हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कीमत यानी प्राइसेस पर बात करने जा रहे हैं, तो पहले श्री लालमन जी, दवाई

0: के दाम इता चाहेला जरूरी कंट्रोले करेगे तो ये जो तथ्य है ये जो पहलू है कंट्रोले खातिर इकाहे जरूरी है इकाहे महत्वपूर्ण है।
1: हाँ जैसे बोला सब दवाई इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में आवेला तो काहे खातिर बस की दवाई जैसे बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है एगो देश में काहे जब हमनी के लड़का से लेके हमनी के बुजुर्ग ले सब कोई जब बीमार रहेलन से दवाई लेवेलन से तो एगो हमनी के मंत्रालय एगो ऐसन योजना आनेलन जे जैसे अफोर्डेबिलिटी बोलीला से सकियन से पहुँचे हो दवाई दवाई की दाम में तो हवे खातिर है सब दवाई कंट्रोले होला हमनी के मंत्रालय देने काहे कंट्रोले होला जमे सकियन से सब हमनी के जितना जैसे बोलनी लड़का ले हमनी के बुजुर्ग ले ओके लोग के चाहेला है दवाई वा एगो अफोर्डेबल प्राइस में तो हवे खातिर हमनी के मंत्रालय हव दमवा कंट्रोले होला करे कलेलन जैसे बोलनी आगे हमनी के देश में जितना दवाई बा उस सब एपोते होला
0: दवाई के इम्पोर्टेशन खाली मिनिस्टर देने से होला या प्राइवेट इम्पोर्टेटर भी होला
1: नहीं इम्पोर्टेटर लोग आने लंसा ढेर इम्पोर्टेटर होन बेशुया आने लंसा दवाई तो वो लोग जैसे आने लंसा तो हमनी के हमनी लगे मंत्रालय में एगो कॉस्टिंग विदा कर देवे लंसा बस की काहे हतीन हौ सब दवाई वा हमनी के मंत्रालय कंट्रोले करेला तो एगो कॉस्टिंग विदा करियन तो एगो प्रॉफिट मार्जिन जैसे बोली ला सा जितना दवाई बा हमने के देश में वो लोग हर दवाई में मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहेला MRP जैसे बोली ला सा मैक्सिमम रिकमेंडेड रिटेल प्राइस तो हई सब हमने के मंत्रालय कंट्रोले करेला कैलकुले करेला तब हाउ एगो होलसेल प्राइस बा और एगो रिटेल प्राइस बा तो हमने मुख्य मंत्रालय कैलकुले करके तब हाउ एपोताते हुआ कि देवेला और हाउ जो दामवा देले हैं सर ओकर से कमती सकी बेची ओकर से ज्यादा नहीं बस की काहे खातिन हमने के मंत्रालय हो दामवा दे दिले हवन ओके बेचे के
2: वास्तव में हमने के जो हमने के समाज एगो स्वस्थ समाज में रहे इस कारण हमने के दवाई एगो एगो बुनियादी अधिकार रही हमने के जैसे लेको ले जिकाश हमने के जन वंशों जन माला दूध बढ़ रहेला उन लोगों को छोटा पैसा मिलेला सोशल सिक्योरिटी के आधार पर और लासौते भी है पोता तो हमने के लोपिताल फ्री है में दवाई सब मिलेला लेकिन कोनो दवाई पहला किने के इस कारण हम लोग के जन दवाई जन किनी ला जाना जब हमने के समाज जब स्वस्थ रहे हेल्दी सोसाइटी रहे हमने के तो सरकार हमने के है हमने के जितना दवाई जन किनी ला जा फार्मासी में हमें एगो मौकअप दलाल बा यानी कि अभी जो हाल ही में हमने के एगो रेग्रेसिव मौकअप देनी जा रेग्रेसिव का अर्थ का है हमने के जितना महंगा दवाई बा ओकर प्रोफिवा कमती है यानी कि कंसोमाते हमने ग्राहक जो बा सकल जाए किने हो सब दवाई इस कारण हर एक जितना दवाई बा हमने के एगो मैक्सिमम जैसे भाई बोलन ना एगो कॉस्टिंग विदा कर लेन जा सब दवाई तो अपोते कर ले जा जहाँ तक हमने के लोपिताल की दवाई भी टेंडर विदा कही ला जाए जिनमें ओपोते कर सकें जा करे लेकिन हमने के जितना दवाई जो फार्मासी में कही ला जा खरीदी ला जा तो वहाँ पर ही हमने के एगो कॉस्टिंग जो पोताते हैं जैसे भाई बोलना ना कॉस्टिंग विदा करियन जा तब हमने को कैलकुलेट करके दवाई जो महंगा बा तो कर रिग्रेसिव मौका पर अप्लाई कर ला जा यानी कि कमती प्रॉफिट रही और जिनमें सकब जा कीने खरीदारी सकब जा कीने बस ये वास्तव में जो लोपिताल में भी मिला था दवाई आर तो हर जगह तो पैसा बापर लासौते सब कोई देखे ले जा हमने के लासौते अच्छा रही तो सब कुछ सुहाई हमने के पहला किने की सब दवाई
1: और दमा काहे कंट्रोले जैसे बोलनी आगे अफोर्डेबिलिटी और काहे चाहेला
0: कंट्रोले वे
1: करे के हां वही बोला था जैसे वल्नरेबल जैसे बोली ना सब वल्नरेबल पॉपुलेशन हाउ उ लोग के पोते से कहला सका है जी दवाई ढेर महंगा रही तो उ लोग नहीं सकन सकीने तो का हुई तो नहीं अच्छा बात एगो इनजस्टिस जैसे बोले समाज में एगो इनजस्टिस हो जाए तो हवे खातिर हमने के मंत्रालय हाउ दमवा कंट्रोले करेला जब हमने के सब जितना कैटेगोरी आदमी बा हमने के देश में वो लोग सकियन सा हो दवाई वा कि नहीं हवे खातिर हाउ प्रिवा हाउ दमवा कंट्रोले करेला सा हमने के मंत्रालय द्वारा
0: तो हमने के सकबा बताओ सकबा बोले कौन कौन दवाई में सब्सिड बा
2: हाँ वास्तव में हमने के हाल ही में बजट जब अभी 2026 के फेब्रुए से हमने के शुरू हो गल बा फेब्रुए से हमने के लागू बा कि तीन प्रकार के जन कैटेगोरी जो मलाई

0: डाइजेस्टिव मोशन में की खरीदारी कही रचा वास्तव में पहला हमने के डायबिटिक के जन मधुमेह के मलाज जन बा डायबिटिक के हमने के हाइपरटेंशन के जगह टोशों है जस्ती और सब दवाई हमने के मोशन के ज़्यादा अफेक्टिव होला तो सब खरीदारी एक फर्स्ट मूविंग आइटम है हमने के फार्मासी में हाली हाली जाला तो वो जस्ती महंगा हो जाए तो नहीं सकब साखी नहीं तो यही कारण हमने के तीन गो जो बाजो वास्कुलर भी हमने के दिल के बीमारी के जितना दवाई बा ना है सब में एगो अलावा सिप्सी दलाल बा एम ओ पी बा हमने के क्ले करके ओकर कॉस्टिंग दे ले हैं जा ओकर मैक्सिमम प्रॉफिट दे ले हैं जा लेकिन ओ में भी हमने के सिप्सी दल ले
1: सरकार 50 रुपया दल ले बा हाउ हाउ है सब जितना जैसे भाई बोलन औती जा बे कहीं है तीन गो दवाई में है सिप्सी वा दलाल बा लिचुइड कर ले हवन सा दिखत हवन सा हां दिखत हवन सा है है सब जस्ती बिकता और है ये कुमार जा हमने के देश में डोमिनेट करेला तनी सुन हमने के
0: पचास रुपया लगभग ऐसे दले से दियापस में आदल बड़ा आदमी लोग के कुछ पसे महंगा है सब और सेक्रेटरी सोशल बगल भी एगो पैसों भी मिलेला जैमे सेक्शन जा कुछ अपन सेक्शन जा खरीदारी करे सब सोच विचार करके जब मौके सर्वेंस कही ला जाना तो वहाँ पर जाके बोलनी जाके सब जितना दवाई बा ज्यादा बेचाओ बा मोश है हमने के ग्राहक ज्यादा किने लन जा तो सब जितना तीन कैटेगोरी जो जो दवाई खरीदे ला जाना हमें सिप सिप दलाल बा
1: और जैसे भाई बोलन काहे खातिर है सब कंट्रोल होला जब हमने के ग्राहक लोग के क्षमता सक्षम से कंज्यूम बढ़े हां बिल्कुल लोग के और एक्सेसिबल रही है सब दवाई से हवे खातिर जैसे भाई बोलन सब जितना एम्पोते होला सब सबके सब में
2: सब दवाई जो
1: सिप्सिड नहीं है बाकी एम ओ पी बा सिप्सिड वा है जितना तीन गो दवाई वा बोलनी हाउ में बा ऊ में एस पी है और एम ओ पी वो बा हवे खाती ना है दमा तनी सुन कमती हो गल बा
0: लेकिन अंतर करे के चाहिए डिफरेंस बा दवाई में और सुप्लीमेंट में सुप्लीमेंट में कुछ अलावा के लिए ले जाओ विटामिन कुछ
1: जैसे
0: विटामिन बा हाउ सब में खाली एम ओ पी वा हाउ सिप्सिड वा नहीं है लेकिन हमने की दवाई जितना मेन दवाई बा ऊ में जस्ती हमने की लागू कर ले जाए लौफा दे ले जाए
1: और ये जैसे भाई बोलन थोड़ा सुन हम रिग्रेसिव मार्कअप वा में बतिया ए रिग्रेसिव मार्कअप वा जैसे भाई बोलन ऊ जितना ही दवाई महंगा रही मान लो 100,000 की दवाई कब होला है बा हमने की देश में 100,000 की दवाई हमने मान लो सिपा मजिनवा कैंस पूछा तो ढेर हो जाला जब हो कैंस पूछा वहाँ प्रोफी हुआ डालब तो हमने की मंत्रालय क्या कहला एगो रिग्रेसिव मार्कअप डाल दे वेला कमती जैसे प्रोफी प्रोफी हुआ कमती कर दे वेला तो हवे खातिन जितना ही जितना दवाई वहाँ महंगा रही उतना कमती ओकर प्रोफी रही जब मैं सकिय जब मैं ग्राहक लोग सकियन सकी ने
2: अच्छा ये अगर आयुर्वेद दवाई देख लिया जाए इमें भी ऐसा स्थिति कंट्रोल ले होला आयुर्वेदिक
1: थोड़ा बहुत कंट्रोले होला बाकी सब नहीं काहे खातिन उ सब के जितना इंग्रेडिएंट बा उ सब मिले ला ला नेचर में तो होवे खातिन उतना सकेला
0: लेकिन जे एपोते करत हो जा तो ओकर बराबर एमओपी वा तब बा हां लेकिन सिप्सिडवा में देजा तक सुन सस्ता वे है कंपारे हमने के सर जो
1: प्रिपेयर होला ला वा
0: तो सर भाव बा सकल जाय जाय हो बगल की दवाई सब जा की ने खरीदारी कर अपन हिसाब से देखे के चाहिए जो दवाई तो संगे जाता खरीद जिमे तो ला सोते जिमन रहे
1: और ये चीज बोल दवाई ले बात नॉर्मल अपन डॉक्टर कंसल्ट करके लिया जा और ये अपन जैसे एगो एगो चीज बोल दवाई प्लीजा क्वालिटी के बा मान लो कपार दुखाता प्लीजा क्वालिटी के दवाई बा देखिया जो तोहर पोस्ट सूट करेला और एंग्रेजियों मोरलेस सब कोई पारी हो
2: मिम मिम दवाई ने पिए रन सा लो पे जुन जाया
1: हाँ हवे खातिन हम एगो डॉक्टर के देख के एडवाइस लेके तब अपन जितना दवाई बा लिया जा
2: तो हमार देखे में जब आप दिनों बड़ा थोड़ा मंत्रालय देने से तो ये महंगाई के दौर से ये सब मतलब मंत्रालय की ओर से ये कदम उठावल गल बा
1: हाँ जैसे बोलनी सर मौका और ही हमने के प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में और ही पैसा मिलल बा है बिजेवा में
2: अच्छा
1: हाँ अभी मंत्रालय हाल ही मिलल बा अभी मंत्रालय हमने के प्राइस फिक्सिंग यूनिट जो है गो यूनिट और ही काम करत हुआ और ही हमने मार्केट सर्वेन्स करत हैं सर हमने को सर्वे करत हैं सर कौन कौन लॉजिक में और ही सकब सर सिप्सिडवा डाले उ और ही दम घटा दे के जब मैं

0: अवरी दाम घट जाए। तो हवे खातिर हमने के अभी अभी हव योजनावा चलता है एगो एगो एफओ माशो खोज जाता ऐसा हमने जाता ऐसा तेरे में सब जितना दाम बा पी एफ यू के देवत है ऐसा कहाँ कहाँ सकियन सा हव दामवा घटाए।
1: आप ही लोग मतलब ऑफिसर जाकर के देख
2: रहे हैं बराबर फार्मासी के भी जाए ला चेके करे उ दमवा में कैसे चेके कही ला जा एगो दमवा ऑफिसे रहे ला उमें वास्तव में इत हमनी के लालवा कानून है हर एक लॉजिक जन बिक्री होता बेचा होता ओकर दाम डाले के चाहिए एस डाल और हो दमवा फार्मासी वहाँ लोग नहीं डाले लन जा फार्मासी वाला उ लोग जिन्हें पोताते है वहाँ हो भी उन लोग चिके तो डाल देवे लन जा कोई रिये करके डाली दूसर दाम
1: नहीं
2: इस सोच विचार के ग्राहक लोग ही बोले सलाह देव अब जा अब जब देवत देखते हो जब दवाई हो में रिये हुई नहीं हुई के चाहिए जो दाम चिकित्सा में वो एपोताते हुए दलाल दिले वन जब दम्मा कैसे कितना कॉस्टिंग देनी सर हवे में दलाल बा देखे के चाहिए नहीं मन से और जहाँ तक हमने के दम्मा में जो ना हमने के हई फार्मासी में हई दम्मा बा हो फार्मासी में हो दम्मा हो जाला कोई हमने के सब कॉम्प्लेट मिलल बा लेकिन ऐसे का होला वो लोग हमने के बैच नंबर देखी ला जाओ में एपोताते जो बात जो महीना में एपोते कर ले हुई हाउ समय के जो कितना फैक्टर देखा जाला कितना कॉस्टिंग हेर फेर हो जाला तब वही का तीन वो हमने जाके चेके कही ला जा हमने के बा हमने के सब हमने के जा करके चेके
1: कर सब और बचवा जब मिलल ओकर हिसाब से होवे
2: तो जैसे
0: जैसे भाई बोलन मान ल आज के दौर पर एगो एपोता सो एगो कंसाइनमेंट आलबा तो ओकर दाम है कस्टिंग करके 100 रुपया मैम मैक्सिन एक महीना के बाद आलबा दुल्हा तनी सुन मोती हो गल तो ओकर कस्टिंग मान ल 100 हो गल तो हाउ में चाहे ला सब बजा हई फार्मासी वहाँ में 100 रुपये किने हव फार्मासी वहाँ में 100 रुपये किने तो चाहे ला ओकर बैच नंबर देखे के मत न हाँ कॉम्प्लेक्स वहा बोल सुने करिए हमने लगे सौखातों वैसा कौरी 400 62 25 00 तो हमने पूछब सर बैच नंबर वहाँ ले लिया के हिसाब से पी एफ यू से चेके करे न तो सीधे सकबा पी एफ यू के सुने करे पूछे हाई बच नंबर वा के कुन दाम हाउ बच नंबर वा के कुन दाम सकबा जब मैं अपन सब जितना दूध बा सब क्लियर हो
1: जाए हाइपरटेंशन के जो दवाई बा जहाँ सब्सिडी दल्ले बा जो औसे जो प्राइस बा होए में डिक्ली एगो दूसर टिकट बा कि
0: जब मैं सब कंपेयर करे
2: जब मैं सब कंपेयर करे चाहिए 50 रुपये बा दलाल बा अब गते गते अब अभी चो चाहिए सर एक गो दमर ही लेकिन कुमोस में दो गो टिकट वा रहल जब मैं सब देखे सरकार के पैसा जाता हूं मैं और हमने के जिम्मे ग्राहक लोग के सकी राहत पहुंचावे सकब जा खरीदारी करी ये हमने के सरकार प्रयत्न करेगा
1: तो ये सब्सिडी जो दवाई में खरीदारी के दौरान मिलेला कैसे उपभोक्ता हमने के ग्राहक लोगन के मदद पहुँचावेला
0: जैसे बोलनी अफोर्डेबिलिटी ये तो सबसे बड़ा चीज़ है जी जी हमने के मंत्रालय है सब दमवा नहीं कंट्रोल करत इन्फ्लेशन हो जात में और दवाई के दाम में ढेर ढेर दवाई महंगा बेचात और ये हमने के ग्राहक लोग के एक्सेसिव नहीं रहत तो हवे खातिन है कंट्रोलवा महत्वपूर्ण है हाउ कस्टिंगवा महत्वपूर्ण है हवे खातिन हाउ जो दाम के विषय है हमने के मंत्रालय कंट्रोल करेला जमे एक्सेसिव और ये हमने के जैसे एल्डरली सिटीजन्स है कोनो के सब पहुँचो मिलेला तो उतना हाउ पैसा से नहीं बस होला उतना तो हवे खातिन जय हई दमवा कमती हो जाला तो हमने के जैसे बुजुर्ग लोग वो लोग के एक्सेसिव होला हाउ दवाई वन से
2: और हम लोग भी जवान लोग भी ना सांस मो लेते हो जाला हमने के तो सिम ठंडी हो जाला मौसम खराब हो जाए सर दवाई सब किने फिर से रिफे हो जाए सौते फजी के उठला पीला सांस के रात के फजी के उठते फिर से जाते हुआ काम करे यानी कि वो इकोनॉमी चलती रही लासौते हैं पोता हुई कहती सरकार और सबसे सीधा डाला था जिनमें ग्राहक लोग के अपन लासौते अच्छा से रही और काम करिए जा प्रगति हो हमने की सरकार
0: हाँ और एगो चीज आज दे कर हमने के देश के सबसे जितना बड़ा असेट्स कौन कुछ ही है हमने के ह्यूमन रिसोर्स हमने के ह्यूमन रिसोर्स जे हमने के देश में जितना हमने के पॉपुलेशन है जो मलद मलद में रही है तो हमने के इकोनॉमी जैसे भाई बोला
1: नहीं रही
0: वहाँ नहीं रही हवे खातिन दवाई एगो आवश्यक जैसे बोली ला सर इसेंशियल कमोडिटी है।
1: तो प्रिय श्रोताओं इस विषय पर आप लोगों के पास कोई विचार हो या फिर कोई प्रश्न हो बेझिझक 402-808-5 पर ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: इस कार्यक्रम में आप सबको के दोबारा स्वागत कर रहे हैं। और आज हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मतलब कीमत पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ श्री लालमन जी हैं और श्री लाल बिहारी जी हैं। तो जैसे हमने ये दवाई पर बताया थे जा तो गवर्नमेंट सरकार द्वारा हॉस्पिटल में सब मेडिसिन सही प्राइस पर मिलेला इसे कैसे कंट्रोल करेला।
2: हाँ, जिन दवाई लोपिटल में मिलेला का मिसाल संति का करेला वो लोग टेंडर लॉन्च करेला सा टेंडर लॉन्च करेला और ये जोन चार हमने के जोन एप बताते हैं हवन सा वो लोग हाउ टेंडर वा भर दे वेलन सा तो मिसाल संति के विदा कर दे वन सा और ये जैसे बोली ला सा जोन सबसे लोएस्ट टेंडर रही तो ओकरो असाइन हो जाए ओकरे असाइन हो जाए तो वो लोग एप ओते करके लोपिटल में विदा कर दिए सा।
1: अच्छा, और फार्मेसी देने से ये जैसे से ये कम हुआ होला से लोग जब चला
2: जैसे हाँ जैसे हमने के देश में फार्मास्यूटिकल बोर्ड है तो उन लोग के एक महत्वपूर्ण रोल है हमने के समाज में हम दवाई कंट्रोल करे के क्वालिटी के और जे जे कुमाजा कुछ हो रही तो उन लोग सकियन सा कौन से ये करे तो हवे खातिर फार्मास्यूटिकल बोर्ड हमने के देश में और जितना दवाई बा उन लोग कंट्रोल करे
3: कि जितने अपोताते हैं उन लोग अपोते कर लें जा और रिटेल में आकर के फार्मेसी में बेचा जाला हमने की दवाई पोताती है लोग अपन कॉस्टिंग भी

0: करियंजा दम्मा दाल देवल तब आकर के रीते जब ग्राहक लोग सब जनजा खरीदारी करे फार्मासी लगे आई ला जा तो हमने के खरीदारी होला चाहे नहीं जला जा पोता तेरे को लोग ओगो बेचियन जा तो हमने के जन दम्मा जन बा हमने के सरकार जन बा हाउ एमओपी जैसे भाई बोल ना हमने के रिटेल प्राइस वा दई ला जा कितना बेचे के चाहे ग्राहक से पोफीवा सब काल के लिए करके नियमन से भाव से तब देखी ला जा फार्मासी लोग के ई हमने के बा कानून है एकर से ज्यादा नहीं बेचे के चाहिए जितना मॉकअप बा जितना दिखाल बातवा में डिब्बा में और प्राइस तक जितना बा एक से ज़्यादा नहीं बेचा जाला कोई भी ऐसे होता हमने के सोने करे के बोले के चाहिए एंड विच सैंक में
1: 400
0: कानून ने आप के कही जामोशन नहीं ले जा फिर मैंने सीधा हाल ही दल सब मुआ फेवरी में जाके देखे छेके कमी दमुआ की छेके होता होकर दमुआ बेचा था कमती सक बाकी नहीं सोचे कि चाहे नीमन से देखल जाए ओकर एक्चुअल प्राइस कितना बा ओकर सब्सिडी के बिना कितना रहल सब दमवा चेक करके तब आप विकास होकर ले
1: सकते खातिर है जो दू गो दमवा रहल ओकर फंक्शन है ये रहल जमे हमने के फैसिलिटी हो जाए जे देखे के हो 50 रुपया दल्ले बा कि नहीं
0: लेकिन महंगा तो बा अभी तो माने के चाहे महंगाई के जमाना बा हो हमने के हाथ में नहीं है ना उसके सब चीज तय पोते के ला जा दवाई भी भावी में पड़ जाला और फिर ताशों होता है पोताशों होला लेकिन सरकार अपन जैसे रिग्रेसिव मौका पर जब दली से ना तब बुझा जाला कि जितना महंगा के दवाई ओकर प्रॉफिट कमती है सकब जा कीने हमने के ला समझते के सकब जा भाव से अपन जीवन से कब जाए जिए
1: और ये हाउ हाय हाय जैसे मौका पर बोलने काहे हमने के ग्राहक लोग को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे के फाइनेंशियल कैसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से कुछ मानते हैं जैसे जी एपोत जब एपोती होला हाउ से एगो ओकर दाम महंगा रहेला जब हमने के एपोत आते हैं जो दाम खुजन से डाली नहीं सकियन से डाली नहीं सकियन से डाली बस की नहीं बोली लाओ लोग मालूम नहीं तू भैया नहीं ऐसे बोला था ऐसा बाकी जब हमने के ग्राहक लोग के एक्सेसिव रही पास की कहे दवाई एगो इसेंशियल कमोडिटी है एगो आवश्यक सामान है हमने के जो बीमार बुजुर्ग हवन सर से नहीं खाए हम बच्चा से लेके हमने के बुजुर्ग ले
2: शुरुआत से बताए सेहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी है
1: फाइनेंशियल प्रोटेक्शन वा चाहे ना दे के उलोग के जब मैं उलोग के क्षमता नहीं घटी और एगो एगो दूसर चीज और जैसे बोली सा इम्प्रूव्ड एडियरेंस इम्प्रूव्ड एडियरेंस माने के मान लो तोहरा एगो साइकिल मिलल बा एगो दवाई लेके मान लो 10 दिन चाहेला लेके हो किने के तो जी महंगा रही तो नहीं सकब हो साइकिल वा कंप्लीट करे तो का होला तोहर सहद और ही बिगड़ जाला तो हवे खातिर हो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन वा जब हो दवाई वा कमती दाम में बेचाए तो सकब सा हो साइकिल वा कंप्लीट करे और तोहरे ला सौते के बेनिफिशिय करी
2: ताकि पहुंचे
0: जैसे हमने के सुपर मौसे में जब से डिफरेंट तारीख के मॉक के प्रोजी है दवाई में भी बराबर है करो तो ब्रांडेड होकर नाम पर ब्रांडेड सब बा अरे कोई बात जेनेरिक बा तो हमने कैसे ही सोचे के भाव से जो डॉक्टर लेके जाए ला सर तो हिसाब से जो जेनेरिक में भी हो जो लाभ हो जाता हो इस सब
2: इंग्रेडिएंट से तो हो ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन सेम इफेक्टिव होते हैं सेम बराबर
0: लेकिन हमने के आधार पर कोई के एलर्जिक है दवाई से और से है सर तो जेनेरिक वा सब से भी करे कोई के परेला ब्रांडेड पीने की तो हमने के ला सौते पर निर्भर है लेकिन बा अभी ले हमने के मौसम में बा सब दवाई अपन चयन कर अपन हिसाब से भाव से लेकिन सब में हमने सरकार अपन एमओपी दल लेबा और यदि है सब तीन जो कैटेगरी में रही कर सकते तो भी के सब्सिडी दला बा ऐसे बा सब सब वास्तव में देख बस सब चीज सलाह
2: ग्राहक के लाभ ही खाते
1: रिसाल और जैसे भाई बोल रही और जात हुआ कोनो कोनो दवाई किने अपन सब इंफॉर्मेशन खोज जाए के आगे बस कि काहे एफोमाशो हुए तुहर ढाल बनी तुहरे पोते से करी जब हाउ सिपा मान लो एगो जैसे बोलनी सिपा एगो दुलिया हो गल बा तो प्लीज कैटेगरी दवाई बा दुलिया के तो अपन अपन जाके देखिए जी एंग्रेजी वहाँ सब जैसे ब्रांड में ब्रांड के नॉर्मल सब एंग्रेजी वहाँ पागे बा ब्रांड खोज बा तो नॉर्मल महंगा हो जब महंगा पे कर बा तो हवे खातिन हाउ एफोमाशो वहाँ खोजिए
2: जरूरी है और जब जस्ती अपन डॉक्टर से ही सलाह सको बिना ऐसे नहीं जा

0: करके कुल उचित लेवे की। और अगर
1: आगे तो दवा के विचार पर नहीं सक बजा ऐसी निक जाके खरीदारी करी अपन दुखते से सलाह मशवरा कर तब जाके
2: बस जा। सब कोई के शरीर बराबर नहीं रहेला, कोई की दवाई हो मिने जाए के हो जाला, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाला, साइड इफेक्ट हो जाला, वे कहते हैं सोच विचार करके अपन दुखते की सलाह मशवरा करके तब अपन दवाई के खरीदारी।
0: अच्छा, हमें हर

0: से निपटने के लिए बजट में कौन सी नई रणनीति लाई गई, कदम लाई गई है?
1: अभी दिग्विजय और ही पैसा मिलल बा हमनी के प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में, और ही पैसा मिलल बा हमनी लगभग 2 मिलियन मिलल बा हमनी के, हौ 2 मिलियन से हमनी अभी काम करत हैं सर, योजना बनावत हैं सर, कौन कौन फौजी में सकब सर और ही हौ सब्सिडवा डाले। अभी हाल ही दिग्विजय सकब सर हौ तो में डाले, कौन मुतों में डाले, और ही काम करत हैं सर, कौन कौन फौजी में सकब सर डाले हौ सब्सिडवा, जमे सकब सर और ही दमवा घटाए और ही हमनी के ग्राहक लोग के क्षमता बढ़ावे।
2: और अभी अभी जो हाल ही में अभी लागू नहीं होल बा एस टी से भी थोड़ा बहुत ज्यादा अपने पोटाशों पर बढ़ाई, जितना लॉजिक जितना बा आठ एक आध गो लॉजिक उम्मीद डाली पोटाशों जस्ती करी जिनमें कॉम्पिटिशन हो जाए मंडी में, यानी कि पोताते है या पोते करता है, हमने एस टी से भी पोते करी तब दमुआ में तलसिन उतराव चढ़ाव हो जाए, तलसिन पैसे भी हो जाए, तब हम लिख सकब जा और प्रोफिटी करके खरीदारी सकब,
1: और हमने के ग्राहकों के लाभ हुई जब जैसे जब जब बल्क इम्पोर्ट करबा तो ओकर दाम घट जाला।
2: हाँ, जैसे आरे को कोई बा पैरेलल इम्पोर्ट, जैसे हम इम्पोर्टेशन करते हैं ना, आरे कोई सकीला इम्पोर्टेशन करे हवे चीज में दमवा में गिरावट
1: हो जाए, हाउ कॉम्पिटिटिवनेस वा जब रही हमने के मंडी में तो वो और ही हमने के दाम घटा दी, बस की का है कॉम्पिटिशन रही ना, वो लोग
0: खाली अलिमेंटेड की चीज में या फिर दवाई में सकीला
1: दवाई में काम करत हवन सर, काम करत हवन सर, हाउ पागल है इम्पोर्ट में, जैसे भाई बोलन अभी अभी नया अल्बा में आई अभी का जानी कब में आई,
0: लेकिन सर्वे से पता चल जाएगा
2: काम फिर काम पीछे तब एक सब से को लागू करे, लेकिन आवता देर चीज सो विचार होता अभी कमिटी बैठाओ थे जा जे में राहत पहुंचावे के ग्राहक लोग।
1: अभी अभी हाल ही हमने के मंत्री बोलन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल वो आवता ऊ हाउ में बहुत बदलाव आवी, बहुत बदलाव आवी हमने के
0: कैसे सकेला कानून,
1: जैसे हमने के जैसे एगो एगो कानून है, हमने के सब कानून कैसे फावोरिजे नहीं बोला मैं कुमाजा, हमने के ग्राहक लोग के में जस्ती राहत पहुँचाई,
0: ओके
1: हाउ जस्ती राहत, और हमने के ई कॉमर्स हमने के ऑनलाइन सब सब सब सब रही हाउ
2: एगो भाव से जिमें ढेर लालू अभी हमने के उतना नहीं सकते लागू करे, जैसे जाए ला जाए स्पेक्षों करे तो देखी ला जाए तो हमने बिता के ले जा कौन ची कुछ कमी बा कौन ची सकब जा मिलोगी करी, तो हमने के जन लालवा बोलथन भाई ना जब वो आई ना तो देख बस जैसे हमने के सकब जा प्रोटेक्शन करे हमने के ग्राहक लोग के ज्यादा सकब जा इन्फोर्स करे हमने के लालवा जितना बा।
0: तो श्रोताओं इस विषय पर कोई सवाल हो 4028085 पर आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग तनी मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यूसुफ एक गीत आप लोगों के लिए चला रही है।

0: आज की चर्चा।
1: अब तनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर तनी चर्चा करब था। अच्छा मिनिस्टर और कानून जोन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान है एगो खरीदारी के दौरान उपभोक्ता लोगन के कैसे मदद
2: मिलेगा। हाँ हमने लगे अभी दिखबा जा हमने के जितना घरेलू सामान बा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक फोन पहुँची करेला जैसे फ्रिजिडेयर बा टेलीविजन बा रेडियो बा फूर बा सब आजकल हो हमने के घर में चाहेला काहे फैसिलिटी देवेला हमने के जीवन में। बाकी हो सब जब रहेला तो कंट्रोल वो चाहेला हो सब में तो हवे खातिर हमने के मंत्रालय में एगो एगो खरीदारी कर बजा तो है सब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के सामान तो एगो एगो एगो कानून बा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक अप्लायंसेस रेगुलेशन उमें का है जब एगो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक किन बजा तो नहीं बोली ला हाँ एगो एगो प्रोसेस है किने के चाहेला दाम देखे के और चाहेला ब्रांड देखे के ना और जितना चीज है जितना इन्फॉर्मेशन किने के आगे चाहेला देख ले के और किन दे बता हरदम बोली ला लेवे के आगे चाहेला चेकी करे के नहीं चेकी करब और बाद में देखुविया करब कि कुछ नहीं अच्छा बा तो हमने के तनी सुन मुश्किल हो जाला है सब मैं इंटरवीन करे के बाकी करब सा देखब सा बेगो भाव पर कैसे कानून सकब सा अप्लीके करे के तोहरा मदद पहुँचाए के। और ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कुछ बोले लन मान लो एगो सामान एगो एग्जाम्पल एगो फ्रिजिडेयर के एगो रेफ्रिजरेटर के अनला गारंटी में बा सब चेक कर दिला सब निमन बा थोड़ा एक आध दिन में एगो प्रॉब्लम हो गया और शिकायत कर दिला हम नहीं लगे और हमने जो पहला क्वेश्चन सवाल करब से तुहर से पूछब जे गारंटी में बा कि नहीं और किने के आगे चेके कर ला कि नहीं बस कि मत ना रिसीव इन गुड कंडीशन में सीए कर दिला और बाद में लौकता कि सिपा काबूसी हो गल बा अब सिपा कोनो कोनो दिक्कत हो गल बा तो नहीं अच्छा रही हवे खातिर हम हरदम बोली ला लेवे के आगे सब चेके कर दिया। और हाँ हमने के सवाल जो है खराब हो गल बा फ्रिज देवा और शिकायत करत हो हमने लगे कि खराब हो गल बा तो देख ऐसे ऐसे अब नहीं लेव ऐसे नहीं है एगो प्रोसेस है कानून में एगो एगो सेक्शन है तो वो देख पूछब सर जे कंप्लेंट तो कर दिल अब मत ना फ्रिज दे तो हर घर में बा अब कंप्लेंट करत हो कि सब लागवा कुछ नहीं करता मगा से कुछ नहीं करता नहीं ऐसे नहीं है हो कंप्लेंट कर दिया आगे उन लोग के दस दिन बा हो फ्रिज देवा रिपारे करे के हो दस दिन हुआ में जे नहीं सक्षम से रिपारे करे तो तोरा ओंजियम जू में तोरा चाहेला एगो कॉम्प्लासे मिले के तब बोलो कि और 3 महीना है बनाए के

0: जे नै सकिन्छ त दुसर सकिन्छ एगो जैसे बोली ला सक एगो क्रेडिट नो दे त सकबस एगो दुसर किने त उमे जे दस दिन वा में शिकायत करबा त हो कानून है जे मान ल चार दिन में को हमनी लगे को शिकायत करबा त तोरा एक्सप्लिके करब सा जे दस दिन के बाद नै कुछ होय त 11वां दिन में रिप्लेसमेंट मिली हां और ये जे गारंटी में रही कुछ नहीं संजे करत हवन जिलाती जिया करत हवन सप्लायर तो हम जब से कानून अप्लाई के एनफोर्स करे
1: हां यानी कि पहला हमने के जैसे भाई बहन पहला रिसी रखे के चाहिए नहीं मन से और पूछे के चाहिए मैं गारंटी बाकी नहीं गारंटी बा और हम के जन लॉजिक वा जन खरीदारी करनी से और जो काम करे के ऑनलाइन से होवे कमा होता कि नहीं मैचेबल गुड्स बाकी नहीं पहला जैसे कि ना दो तीन दिन में खराब होकर बा तो पोजुआ में तेज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकेला लेकिन हम भी लगे कॉम्प्लेक्ट कर बा अच्छा बा लेकिन पहला हो बुटीक और मगाजे वो लगे ले रहा हूँ वहाँ जाके चाहिए आगे वो शिकायत वा करी वो अपन कैसे कैसे विचार बा कर लालवा चाहे डाले के ऊपर चाहे चाहे पोजुआ ले करके ना अपन देखी कैसे कैसे बा दस दिन जैसे भाई बोलन ओके अवधिवा देवल कर बा कानून दस दिन के बाद में कुछ नहीं करता तब
2: उपभोक्ता लोग के चाहिला ध्यान में रखे के कि एगो खरीदल सामान की वारंटी तब शुरू होला जब डिलीवरी होला
0: गारंटी वा शुरू होला जब हो रिसीव्ड इन गुड कंडीशन जब डिलीवरी हुआ होला तो वो लोग के एक बरिस मिल जाला न तो कोनो सकेला दो तीन बरिस वारंटी हो सप्लायरों में डिपेंड होला कितना कितना बरिस दी
1: लेकिन भाई जी बोलने ना खरीदारी करे से आगे काम रहेला इन्फॉर्मेशन ले ला पोजवा कौन चीज है किन मारत के है कौन चीज आर बेचे उला के और जिम्मेदारी है बोले के चाहिए कि पोजवा इतना देश से आल बा हई में कैसा बा इतना गारंटी देवल जाए सा और गारंटी में कौन चीज कुवे होता गारंटी
2: कौन
0: चीज कुवे कबू कबू कबू शिकायत हाँ गल सप्ताह हम के एगो शिकायत मिल रहा काम करे के उमे अब जोन जोन अदमिया हमने लगे शिकायत कल नो लीची जली ची लोग गारंटी तो चाहत पूछे के जैसे भाई बोलन ओकर जिम्मेदारी है चाहे ला पूछे के हाँ मुलिखन फेले लिखा टेलीविजन में नहीं कुवे होला जब कुछ हो जाला नहीं कुवे होला नो लीची जी हमारी लोग गारंटी तो ऐसे नहीं है और एक दूसरी चीज जैसे एगो अच्छी करब ला टेंशन जब कुछ किनबत चाहे ला देखे के और इज इट फिटिंग योर पर्पस फिटिंग योर पर्पस यानी कि गो फ्रिज दे किनबा और ठंडा नहीं कर था तो नहीं अच्छा है तो चाहे ला शिकायत कर दी वो लोग ऑटोमेटिक सौजे कर दिए अंसर हवे खातिर हाउ जैसे भाई बोल
2: टेस्टे हो हां जब आए तब डिलीवरी करी तो लोग
0: टेस्ट करे टेस्टे करे कि जैसे वो लोग की जिम्मेदारी है जैसे अनियन से तक घरी हाउस प्रायर टू हाउस सीनियर करे कि रिसीव इन गुड कंडीशन चेक कर जे टेलीविजन देखत भारता कि जिमाज मिलता नहीं मिलता चाहे ला देखे कि फ्रिज देवा ठंडा करता कि नहीं करता चाहे ला देखे कि राजू खेलता कि नहीं खेलता
2: देखे कि घरे में खुशी के मारे
1: हो खुशी के मारे हाली हाली बातों में दाल जैसा हाँ
0: जाता हूँ
1: नहीं ऐसी नहीं अभी होता नहीं होता
0: हवे हवे हवे बोली ला सा हमनी हमनी जागरूती अभियान चलाए ला सा
2: रेस्पॉन्सी
0: हाँ अवेयरनेस कैंपेन चलाए ला सा कैसे हमनी के जिम्मेदारी बढ़ाए के हम देखिए ग्राहक लोग के
1: हमके दुआ भी है और जिम्मेदारी भी बा पूछे के चाहिए बोला आगे खरीदारी से करे से आगे ना पूछा वाच पड़ताल कर अपन रिव्यू देखे अभी तो एक एआई के जमाना बा सब सोचा नहीं मन से देखा और जब लिवरेजन वाले वो थे जाए डिलीवरी होता तो कोई के चाहिए घर ही रह के देखा मन से पोजुआ हो वे कुलिया के हा हो दूसर के नहीं मिला दूसर पोजी ले ले नहीं सर अब बोल नहीं है
0: और हाउ एगो डिलीवरी जो भाई बचिया था वन और डिलीवरी लेवा था हुआ एगो बुजुर्ग के डाल देवा डिलीवरी लेकर नहीं अच्छा है एगो एगो वहाँ जाए एगो रेजोनाब जब मैं कोई समझी हाँ कोई समझी जब मैं बाद में तोहरा मुश्किल में नहीं हुई
2: और ये जो महंगाई के जमाना में कैसे मतलब चाहे ला स्मार्ट खरीदारी करें हाँ, कि सब चाहे ला
0: जैसे हरदम बोली ला तनी सुन विंडो शॉपिंग टेलीविजन सब मगाजे में बेचा ला तनी सुन जाके दिख परख अनालिसिस कर रिव्यू दिख तब जाके अपन खरीदारी करी और जैसे जैसे हरदम बोली ला मैक्सिमम इन्फो

0: ऑटोमेशन बिल्ड्स स्मार्ट कंज्यूमर्स. जितना इन्फॉर्मेशन खोजब उतना तो हर ढाल बनी बाद में मुश्किल में नहीं पड़ब होगा.
1: अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे उपभोक्ता के लोग के मदद पहुँचावेला?
0: कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे बोलनी अभी ढेर अधिकार हो गल बा, जैसे 8 प्रकार के अधिकार बा, जैसे राइट फॉर इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू रिड्रेस और बा है. हाउ हमनी के कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कानून बा ओके एनफोर्समेंट करके, जैसे एगो एग्जाम्पल एगो राइट टू रिड्रेस, एगो एगो सामान खरीद ला टूट गल बा, उ लोग की दुआ है सप्लायर के चाहेला, उ लोग की दुआ है सामानवा के बनाए के, एगो जैसे बोलनी टेलीविजन फ्रिज दियाजो कोनो फो इलेक्ट्रिक ओकर अधिकार है चाहेला बनाए के. और एक कानून वो बा जैसे वारंटी रेगुलेशन बा, अभी जैसे जिसकी थी करा था ऐसा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक अप्लायंसेस उ लोग के अधिकार है ये सब कानून लागू करके, जन जन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बा हाउ कानून वा लागू करके हाउ अधिकारवन के पोतेजे करीला सा सुरक्षा करीला सा, जब हमने के ग्राहक लोग सकियन सा एगो एगो राहत पहुँचाए और ये लोग वो तनि सुन लोग कैसे बोली सहा तनी सुन रहत हो
2: जाए. हवे कानून में कुछ प्रोटेक्शन आप में के दाम बोला गल बाय स्पेसिफिकली कल निमन से कि हमने के दाम डाले के चाहे कोनो चीज बेचाव होता ना, हमने के ट्रेडर लोग बेचा था मजा व्यापारी लोग अपन एएस डाले के चाहे मोट. अब हाल ही हमने के पोमे जुलेट से बाद में से कब जाएगा प्रोग्राम करी में कि हमने के भाव लिखे के जन सुन सौजे
0: हो गल बा हां
2: जन सब्सिडाइज प्राइस के एसपी डाले के चाहे जन मैक्सिमम रिटेल रिकमेंडेड प्राइस बाय ओकर एमओपी डाले तब ओकर एएस ओकर मोट डाले के चाहे बाद में सकब जाएगा लागू होता
0: है कि
2: भाव से जनता लोग के चाहिए जाने के चाहिए ई में सब्सिड बा, ई में मॉकअप है और ई में दम बराबर बा हमनी के
0: और कोनो कोनो लॉजिक वो कोनो लॉजिक वो उ में सब्सिड वो बा और ई एमओपी बा
1: दोनों.
0: हां दोनों बा जैसे एगो एग्जांपल हुआ दूध की. हां दूध की जैसे कुशवा बा ओकरो में एमओपी बा ओकरो में एसपी बा, एसपी यानी के सब्सिडाइज प्राइस ओकरो में द हाउस ऑफ जैसे भाई बोलने के दूसरे प्रोग्राम में जिसकी देख रहा था कैसे
2: कानून में दाम परम आवश्यकता हो के चाहिए.
0: और कानून जैसे बोलनी कानून आवा था जे है सब चीज नहीं दल बजा तो एगो कोथा मौसम हो जाए तो होवे खातिर एगो दूसर प्रोग्राम करब सर हो जैसे बोलब सर हमने के जितना हमने के कोमिया सब जितना के हमने के भाई बहन हो सर जी
1: देजा मंत्री मंत्रालय देने से बतावल कर रहा कि कौन कौन जैसे सिपास है कौन पौधी आगे भी बतावल करवा कि कौन चीज लेकिन अभी लागू नहीं हो बा.
0: हाँ,
1: में सब्सिड रही अभी
0: और आवता अभी अभी पैसा मिलल बा हाले बीजे में हमने के मंत्रालय के तो अभी जैसे अभी सर्वियंस कर रहा
1: था मतलब ग्राहक लोग के और राहत मिली
0: और राहत मिली बराबर
2: किने के आरु में लिखावल जाए अभी में सब्सिड बा है कि दम्मा कितना होगल बा ओकर मॉकअप सब बा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन आख में जैसे बोला है सब कानून बा हमने के तीन प्रकार के दम्मा तो मोगिस में बा एगो फिक्से भी दाम है एक लालवा में के आधार पर जैसे आलू प्याज सरकार हमने के सब प्रयत्न कर ले बाय सब प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जिसमें राहत पहुंचावे के.
0: और हमने के मंत्रालय के ऑब्जेक्टिव का है हमने के ग्राहक लोग के क्षमता बढ़ाए के बस कि मानी ला अभी तनी सुन महंगाई के जमाना हो गल बा विश्व भर में महंगाई के जमाना चलाल बा तो हवे खातिर हमने के मंत्रालय
1: पूरी कोशिश
0: धीर योजना बनावत हवन जब में हमने के ग्राहक लोग के क्षमता बढ़ाए के और वो लोग के राहत वो पहुँचाए और जितना लॉजिक बा वो लोग के एक्सेसिव हो.
1: अच्छा, हमारे ग्राहक लोग के अंत में कौन चीज बोल बा कौन संदेश दे बा कौन चीज सब बोले
2: ये संदेश में हमने के स्मार्ट जैसे बोल रहे स्मार्ट बाइंग करे के चाहिए नहीं हमने के रिव्यू देखा तुलना देखा दाम की एक के प्लाजा के नहीं किन सब घूम लेते सुन घूम लो आगे कितना प्राइस के यानी कि दाम की तुलना करे के चाहिए और खाली सस्ता नहीं देखा क्वालिटी भी देखे के चाहिए तब खरीदारी करो हमने के फिजूल खर्चा नहीं करो भाव से अपन पैसा हिसाब से दे पहुँच करे के चाहिए.
1: हर बार प्रोग्राम करते हैं इसी आशा के साथ कि हमारे जो ग्राहक हैं उपभोक्ता वो लोग लाभ उठाएं इस प्रोग्राम से और जितनी जानकारी आप लोग दे रहे हैं इससे ज़रूर मतलब इस सलाह को लेकर के अपना कुछ बोल बा अंत में भाई जी.
0: जी हाँ, हमने के ग्राहक लोग के जैसे हरदम बोला था प्रोग्राम में जे अपन खुद के प्रोटेक्शन चाहेला करे के अपन जितना इन्फॉर्मेशन लिया जमे सक बजा कोनो

0: मुश्किल में नहीं पड़ी।
1: बिल्कुल
2: हाँ। और जैसे आज के प्रोग्राम में दवाई की है, दवाई की देखनी मन से कुछ और सलाम और शौरा बा तब निकल के संपर्क करी सर।
0: और कुनो कुनो चीज रही हम लगी सकबा जा सुनने करे एन विच साइन 4625500
1: हॉटलाइन 1-8-5 और अगर
0: 4-6-0-2-5-0-0
2: व्हाट्सएप नंबर भी है 5-9-4-2-8-8-8-8
0: सर बजा सुने करे और कुछ रही पूछे के सलाह मशवरा चाहेला तब पूछा झिझक सुने कर हमने हाई सर हाउ तोहरा एक लेसी करेंगे।
1: बिल्कुल हमारी जो ऑफिसर्स है बिल्कुल तैयार हैं आप लोगों की शिकायत दर्ज करने में, जो भी हो वो आप लोग बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। तो आज की चर्चा से हमें ये समझ आता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कीमत सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि सीधे तौर पर हर घर की सेहत और बजट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आशा करते हैं हमारे इस प्रोग्राम से आप श्रोताओं ने अवश्य लाभ हुआ होगा और हमारे दो अतिथि यानी कि श्री विशाल सिंह लालमन जी और श्री सूरज लाल बिहारी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ में टेक्निक पर यूसुफ सुब्राची उरुसा और जिनेश जिसके मदद से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया गया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप श्रोता जो हमारे साथ आप लोगों ने दिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार और आदाब।

0: चले हुए के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की तरफ से पेंशन सुधार योजना और मींस टेस्टिंग की धारणा की कड़ी आलोचना की जा रही है। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ गोपी ने इस बात की निंदा की कि समस्त जनता को प्रभावित करने वाले इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-2027 एक स्पष्ट रोड मैप की तरह होना चाहिए जो ये दर्शा सके कि सरकार ने जनता की अपेक्षाओं और मांगों को ध्यान में रखा है या नहीं। नरेंद्र नाथ गोपी ने साथ ही बजटीय फैसलों, खासकर संचालन कमेटी से संबंधित फैसलों में कुछ गैर निर्वाचित लोगों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं। बजट 2026-2027 में ब्लू इकोनॉमी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। हालांकि घोषित किए गए कुछ प्रावधान सर्वमान्य नहीं बताए जा रहे। गैर सरकारी संगठन इकोसिड के अध्यक्ष सेबास्टियन सोवाज के अनुसार इस सेक्टर के विकास के लिए किए गए प्रस्ताव पर्याप्त नहीं हैं। उनका मानना है कि इनमें व्यावहारिक दृष्टिकोण की कमी है। व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा। पोर्ट लुइस में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई। उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका मिला। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, वेनेजुएला में के बाद एक भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई। कई इमारतें ढह गई हैं। कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओ, 10:03 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम प्रसारित करने जा रहे हैं। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। चलिए इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ निभाएंगे। कार्यक्रम है भक्ति धारा। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेकर करते हैं। किसी भी शुभ कार्य क्यों न हो, शुरुआती दौर से हम उनका नाम लेते हैं। और आपको पता है उन्हें हम विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी कि जीवन की बाधाओं को दूर करने वाला देवता। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

0: चलिए श्रोताओं, 10:22 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में भक्ति धारा कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रही है। श्रोताओं, कहते हैं कि जीवन में जब भी रास्ते कठिन लगे तो भगवान गणेश जी का नाम हमें लेना चाहिए और उसका स्मरण करने से मन को नई ऊर्जा और विश्वास से जो है हमारे जो है जिंदगी में भर जाती है और उनकी कृपा से हर नई शुरुआत जो है मंगलमय बनती है। तो चलिए, आज का दिन जो है हम भगवान हरि विष्णु का नाम लेते हैं और उनका एक रूप है राम जी। राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे मर्यादा में रहकर करते थे। तो चलिए, ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के लिए।
1: इस भजन में राम भक्त गिद्धराज जटायु का वर्णन किया गया है।

0: भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कबीर मंदिर की तरफ से। ये विशेष कार्यक्रम आप आचार्य श्याम दास जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: बंदों सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम दे तन साय।

परम श्रद्धालु श्रोतागण, साहेब बंदगी साहेब, आज भक्ति धारा कार्यक्रम श्री कबीर मंदिर बोंतेर वाकवा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। समस्त धर्मों में सत्य जैसे आदर्श सद्भावना पर विशेष बल दिया गया है। भक्ति के मार्ग में इसका महत्व निर्विवाद है। सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस इस वर्ष 29 जून को मॉरीशस में कबीर मंदिर बोंतेर वाकवा में और अन्य मंदिरों में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। दिव्य श्रोतागण, इस संसार में आत्मा सत्य का शाश्वत रूप है। यह चेतन अविनाशी अजन्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यह सर्वव्यापक है और हर प्रकार के जीव जंतु की जड़ों में है। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। इससे एक हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है और यही मोक्ष कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है नो दे सेल्फ। मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो संकल्प सोच हृदय में लाते हैं, मन कर्म वचन से जो उपाय करते हैं, वह सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कर्तव्य परायणता को सत्य से जोड़ना होगा, तभी सत्य सार्वभौम सिद्ध होगा और वह हमारे जीवन में सुख लाएगा। सत्य के माध्यम से अपने मन को अनुशासित करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सत्य किसी को हानि न पहुंचाए। सद्गुरु कबीर साहब का लक्ष्य व्यवहारिक था। वे मानव मात्र को वास्तविक मुक्ति का मार्ग दर्शाना चाहते थे। अंधविश्वास और अज्ञानता से लोगों को दूर रखना ही उन्होंने अपना ध्येय भी माना। सत्य मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है सद्गुरु कबीर साहब की वाणी। सद्गुरु कबीर साहब का कहना है कि उन्हें नीच जाति का मानकर उनका उपहास उड़ाया जाता था, पर वे उस जाति को उच्च समझते थे जिसमें जन्म लेकर मनुष्य को ईश्वर का स्मरण चिंतन मनन करने का तथा भक्ति में लीन होने का सुअवसर प्राप्त होता था। कबीर मेरी जात कौ सभु को हासिनहार, बलिहारी इस जाति को जपियो जिन्ह सृजन हार। सद्गुरु कबीर साहेब के मतानुसार पूर्ण ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है। आर्थिक संपन्नता सामाजिक प्रतिष्ठा से व्यक्ति महान नहीं बनता, आध्यात्मिक उन्नति से ही वह महान बनता है। सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा निर्दिष्ट मार्ग आध्यात्मिक कल्याण वाला मार्ग है। भक्ति प्रेम ज्ञान द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मैं पांच तत्व का पुतला हूँ, ईश्वर द्वारा निर्मित हूँ, वहीं अदृश्य पुरुष हम सब में खेल रहे हैं। श्रोतागण, यही परम सत्य है। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाहीं,

पांच तत्व का पुतला गए भी खेले माही। जब तक व्यक्ति अहम के वशीभूत रहेगा तब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएगा और सत्य से दूर रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही। अर्थात

साक्षात्कार हो गया तब मेरे भीतर का अहम समाप्त हो गया। अब अनंत प्रकाश में आत्मस्वरूप को देखने लेने से अज्ञान का अंधकार मिट गया। सद्गुरु कबीर साहब सत्य को तपस्या के समतुल्य घोषित करते हुए कहते हैं, सत्य के समान कोई तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। अर्थात इस संसार में सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और सच बोलना के समान कोई परम धर्म नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में ईश्वर अर्थात परमात्मा विराजमान होते हैं। सत्यवादी व्यक्ति जब दूसरे सत्यवादी व्यक्ति से मिलता है तो दोनों के बीच प्रेम बढ़ जाता है, परंतु जब सच्चा मनुष्य झूठे मनुष्य से मिलता है तो सारा स्नेह समाप्त हो जाता है। साँचे को साँचा मिले अधिक बढ़े स्नेह, झूठे को साँचा मिले तड़ दे टूटे नेह। यदि कोई सत्यवादी है पर उसे सद्गुरु अथवा परम पिता परमात्मा के नाम का ज्ञान नहीं, ईश्वर से उसका सच्चा परिचय नहीं, तो वह ज्ञानहीन कहलाएगा। साँच हुआ तो क्या हुआ, नाम न साँचा जान, साँचा होए साँचा मिले साँचे माँ ही समान। जो सत्य का साधक है सत्य का अनुसरण करके परम सत्य को प्राप्त कर लेता है, वह सत्य के साथ एक हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया वह क्यों जाति कुल मर्यादा की झूठी परंपरा का अनुसरण करेगा। सद्गुरु कबीर साहब एक ओर सत्य बोलने का परामर्श देते हैं तो दूसरी ओर झूठ से बचने का भी। यह संभव यथासंभव झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। हे प्राणी, सत्य को ग्रहण करने पर इस संसार में आने जाने का आवागमन का चक्र से दूर हो पाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, झूठ बात नहीं बोलिए जब लग पार बसाए, अहो कबीर साँच गहूँ आवागमन नसाए। अपने स्वयं अनुभव क्या होगा कि एक बार झूठ बोलने लगे तो इस एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह विडंबना है कि व्यवसाय में सफल होने के लिए असत्य का सहारा लेना पड़ता है, जो बुरा कर्म कमाना ही कहलाएगा। साँचे कोई ना पतियाई, झूठे जग पतियाई, पाँच टका की धोपटी सात टके बिक जाई। कहने का आशय यह है कि सत्य पर किसी का विश्वास नहीं है। संसार में लोग असत्य में विश्वास करते हैं। एक व्यापारी उस धोती को 7 रुपये में बेचता है जिसका वास्तविक मूल्य 5 रुपये है, और वह अपनी वस्तु की झूठी कीमत झूठ बोलकर उद्धृत करता है। वास्तव में झूठ बोलकर ही व्यापार में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मदिरा की बिक्री दूध की बिक्री से अधिक सहजता से संभव है। साँचे कोई न पतियाई, झूठे जग पतियाई, गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठ बिकाई। अर्थात दूध एवं दही जैसे शुद्ध पौष्टिक पेय पदार्थ की बिक्री के लिए दूध वाले को गली गली न नुक्कड़ नुक्कड़ घूमना पड़ता है, जबकि
शराब जैसे नशीले

पदार्थ का विक्रेता एक ही स्थान पर बैठकर अपना सारा सामान बेच डालता है। अर्थात ऐसा समय आ गया है कि लोग विवेक शून्य होते जा रहे हैं, उस पदार्थ को अधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं जिससे उसकी हानि अवश्य है। कलयुग में सत्य का कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई सच बोलता है तो लोग उसे मारने पर तुल जाते हैं। यदि मैं सच बोलता हूँ तो लोग मुझे पीटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे झूठ में विश्वास प्रदर्शित करते हैं। दुनिया उस पशु की तरह है जो किसी को भी फाड़ कर खा जाता है। असत्य के मार्ग पर विचरण करने वाले सत्य के भय के कारण से ऐसा व्यवहार करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आपके हृदय में जो सत्य है उसका बाह्य प्रदर्शन मत कीजिए। ऐसी ज्ञानी व्यक्ति अभी भी हैं जो आपके मानव मन के रहस्यों को जानने में सक्षम हैं। वे स्वयं सब कुछ जान लेंगे। अतः आपके भीतर निहित सत्य के सांचे ज्ञान का दिखावा करना अच्छा नहीं है। तेरे अंदर सांच जो बाहर नहीं जना, जानन हारा जानी है अंतर गति का भाव। अर्थात कण कण में समान रूप से विद्यमान उस परमात्मा को ही हम परम सत्य कहते हैं। वह नाम जिनसे उन परम सत्य का पहचान मिल जाए उसे ही दोहराने और जपने की आवश्यकता है। आज के वाणी को हम यहीं पर विराम। बंदगी साहे, बंदगी साहे।

चलिए श्रोताओ, अभी आप कबीर मंदिर की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। 10:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में दिन के 11 बजे तक। आपको पता है कि भगवान विष्णु का अवतार जो है हुए है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण जो है कर्म पर बल देते हैं, साथ ही साथ प्रेम को भी बहुत ही महत्व देते हैं। तो चलिए अगली भेंट में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वरों में ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान आप सभी श्रोताओं के लिए।

चलिए श्रोताओं, 10:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और कार्यक्रम का समापन जो है हम एक आरती के साथ करने वाले हैं। साथ निभाने के लिए बहुत धन्यवाद। सुबह सवेरे 6 बजे से आप लोगों का साथ रहा, तो चलिए श्रोताओं, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, प्यार भरे मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन जो है एक आरती के साथ करेंगे। ये प्यारा सा भक्ति गान जो है आज का दिन हम साईं बाबा को भी पूछते हैं। हमारी ज़िंदगी में श्रद्धा और सबूरी का होना बहुत ही आवश्यक है, तो यही संदेश है प्रभु साईं बाबा की। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायरा की पेशकश में।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार नीलवानी, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण, प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मॉरिशन रुपए की धीमी वृद्धि और

और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है, जो 2025 में 3.2% पर थी। बजट बहसों में कल भाग लेते हुए विदेश मंत्री रितेश्राम फल ने MSME की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। उनके अनुसार पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस किया है। राज्यसभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। हर साल 25 जून को विटिलिगो से ग्रस्त लोगों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समस्या के तहत प्रतिरोधक कमियों के चलते त्वचा का डीपिगमेंटेशन होता है और इसका प्रभाव शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होता है, क्योंकि कई बार इससे पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर विटिलिगो मॉरिशस फाउंडेशन ऐसे लोगों के समर्थन के लिए कार्यरत है। मुख्य रूप से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही इस फाउंडेशन ने हाल में परिवहन मंत्रालय से विटिलिगो से पीड़ित लोगों को अपनी गाड़ी में टिंटेड शीशे लगाने की अनुमति देने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, कई यूरोपीय देश भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। फ्रांस में कल तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी फ्रांस में 68,000 से ज्यादा मकान बिजली आपूर्ति से वंचित रहे। कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। फ्रांस के आधे से ज्यादा शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: श्रोक समाचार सुनिए। तमिल टेम्पल रोड लागेमाउ साई पीएमई, तमिल टेम्पल रोड लागेमाउ साई पीएमई 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सरदम्बल मुचिया, श्रीमती सरदम्बल मुचिया पैदाशी नाम मुचिया, जो देवी नाम से जरा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे सदाशिवन मुचिया सिवन के मकान तमिल टेम्पल रोड लागेमाउ साई पीएमई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंसा साई पीएमई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाश्रम में, ऋषि दयानंद लेन मौलाश्रम में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री सुलेश गोकुलक, श्री सुलेश गोकुलक, जो सुलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले SSR एन अस्पताल में पूर्व अटेंडेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी इनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाश्रम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजी दोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। समय सूचित नहीं किया गया है। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

0: की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। मौज़ सामेईन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ान रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा असुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक हम्द मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब का बयान नातो सलाम और आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह मरियम की तिलावत से।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك

0: 25 मिनट हो चुके हैं, जुमेरात का दिन है, जून की 25 तारीख है और माहे मुहर्रमुल हराम की आज 9 तारीख है। अब आप समात फरमाएंगे खतीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाइलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: نحمده نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم। सामिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। अज़ान मोहतरम, हम मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस महीने में हैं। इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी और शहादत के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह उसका रसूल और अहले बैत तहार कबूल फरमा लें, आमीन सुम्मा आमीन। शहादत अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस खुशनसीब हजरात को नेमत मिलती है, अल्लाह तबारक तआला ने उन पर अपना इनाम अता फरमाया, जैसा कुरान हकीम सूरह निसा के आते मुबारका में है, वमन युतिल्लाह व रसूल फऊलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीईन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जो कोई अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, बस वही उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम, सिद्दीकीन हैं, शोहदा हैं, सालिहीन हैं। आयत मुबारका में अल्लाह ने इनाम याफ्ता बंदों में से शोहदा को शामिल किया और शोहदा को सालिहीन पर फजीलत बख्शी। अल्लाह ताला ने अपनी जो नेमतें और फजल व कमाल बाकी मखलूक को अता फरमाए, उन तमाम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में जमा फरमा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को देखें और उनकी शहादत को देखें, तो इस्लाम में बेपनाह जंगें हुई हैं और उससे पहले भी ज़माने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ज़माने नबी करीम सल्लम आखरुल अंबिया वल मुरसलीन तक हुई और उसके बाद भी जंग जारी रही और आज भी जंग हो रही है। और एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है। तारीख़ करबला के बाद अब हक और बातिल को आम लोग भी दो लफ्ज़ों में कहने लगे। जो हक है उसे हुसैन की तरफ निस्बत करते हैं, जो बातिल है उसे लोग यजीद कह के पुकारते हैं। शोहरत और मशहूर होने के एतबार से जो इज़्ज़त व वक़ार शहादत इमाम अली मक़ाम को हासिल है, वो और दीगर शहादतों को नहीं मिला। हम मुसलमान हर शहीद की ताज़ीम करते हैं, अदब करते हैं,

वो शहीद चाहे जमाते अंबिया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे, या जमाते सहाबा में हजरत सैयद उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा और दीगर असहाब रसूल की बेपनाह तादाद है जो शहीद हुए। हर शहीद की हम ताज़ीम करते हैं, अदब करते हैं, हम पर फ़र्ज है, इसे याद रखें। लेकिन क्या क्वालिटी है, क्या खसूसियत है शहादत इमाम अली मकाम की कि सारी शहादतें एक तरफ, इमाम अली मकाम की शहादत एक तरफ, जो शोहरत और इज्जत मिली है और मिल रही है वो दीगर शहादतों को नहीं मिली। और शहादत का एक और दूसरा पैराग्राफ आपके सामने कि बंदे मोमिन जब शहीद हुआ तो उसके बाद तारीख लिखी गई, उसके बाद पता चला फला मोमिन फला जंग में शहीद हुआ, जंगे बद्र है, जंगे उहद है और इस तरह तमाम जंगें हैं, उसमें शहादत के बाद पता चला उनके नाम का ऐलान हुआ, डिक्लेयर किया गया कि फला फला वक्त शहीद हुए। लेकिन तारीख में या हदीस मुबारका में अब तक कहीं इस बात का जिक्र नहीं मिला सिवाय शहादत इमाम अली मकाम के कि शहादत से पहले ही उनका जिक्र कर दिया गया हो, उनका ऐलान कर दिया गया हो। अल्लाह के इल्म में बात रही है कि कौन शहीद होगा, कहाँ होगा, लेकिन अल्लाह ने उसका इजहार नहीं फरमा, सिर्फ और सिर्फ शहादत इमाम अली मकाम का शहादत से कबल ऐसा इजहार फरमाया कि हजरत जिब्रील भी जानते हैं, नबी दो आलम सल्लम भी जानते हैं, सहाबा भी जानते हैं, हजरत अली मुर्तज़ा भी जानते हैं, हजरत फातिमा भी जानती हैं, सहाबा इकराम की जमात जानती है कि अभी हुसैन बच्चे हैं लेकिन एक दिन ये शहीद होंगे। और ऐसी शोहरत इमाम अली मकाम की शहादत को हासिल है कि अगर बच्चे बच्चे से पूछो, मुसलमान का बच्चा हो, साहब ईमान की औलाद है, और कुछ वो हजरात जो तारीख पढ़े हैं वो भी जो इमाम हुसैन को नहीं मानते हैं, मुसलमान अपने को कहते हैं, उनसे भी पूछो तो वहाँ कहेंगे मुहर्रमुल हराम, 10 मुहर्रम योम आशूरा की इमाम अली मकाम और उनके बच्चों की शहादतें हुई, अगरचे वो नहीं मानते। अल्लाह उन्हें हक और सच देखने और मानने और ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। और कुछ वो हैं इंसानों में जो इस्लाम को ही नहीं मानते लेकिन शहादत इमाम अली मकाम के महीने को भी जानते हैं, तारीख को भी जानते हैं और दिन को भी जानते हैं और टाइम को भी जानते हैं। इतनी शोहरत, खुद मौला अली मुश्किल कुशा शहीद हुए लेकिन तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, औराक में लिखा हुआ है, या अहले इल्म जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता। लेकिन उनके मद्दे मुकाबले इमाम अली मकाम की शहादत किताबों में नहीं बल्कि हर इंसान और मोमिन के दिलों में लिखी हुई है, इसलिए वो बराबर जानते हैं। हदीक इंसान अपनी तारीख़ पैदाइश भूल जाता, अपने बाप दादा की तारीख वफात को भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ने इंसान और जिन्नातों के दिलों में शहादत इमाम अली मकाम की ऐसी तारीख लिख दी है कि हम तमाम शहादतें भूल जाएंगे लेकिन शहादत हुसैन को नहीं भूल पाते हैं। शहादत उस्मान गनी भी है,

शहादत हज़रत सज्जदा उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है, शहादत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर भी है, शहादत हज़रत हमज़ा भी है, तमाम शहादतें हैं। वजह क्या है? अज़ान मोहतरम, इतना चर्चा और शोहरत मिले इसके मुकाबले में किसी और शहादत को मकाम हासिल ना हो सका।

उसी वक्त से आपने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का तस्किरा आम कर दिया था। चुनांचे हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस, जो हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, उनसे मरवी है, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर बोली, या रसूलुल्लाह, आज रात मैंने डरावना ख्वाब देखा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने अर्ज़ किया, सख्त डरावना है, ना तो मैं उसको बयान करना पसंद करती हूँ और ना आप उसको सुनकर पसंद करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सुनाओ तो सही, वो क्या है? हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने अर्ज़ किया, मैंने देखा गोया आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटा गया है और मेरी गोद में रख दिया गया है। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा। इसकी ताबीर ये है, इंशाअल्लाह हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा के यहाँ लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा, क्योंकि ख़ानदान की औरतों में तुम्हारा ही रिश्ता बड़ा है और तुम उस लड़के के ज़्यादा बेहतर तौर पर तरबियत कर सकोगी। चुनांचे हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ इमाम हुसैन पैदा हुए और जैसा कि रसूल सल्लम ने फरमाया था, उन्हें मेरी गोद में दे दिया गया। फिर एक दिन मैं रसूल सल्लम के पास गई और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपकी गोद में देकर ज़रा दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गई, और फिर मुड़कर मैंने जो आपकी तरफ नज़र उठाई तो क्या देखती हूँ कि रसूल सल्लम की आँखों से आंसू जारी थे। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल कहती हैं, मैंने पूछा, ऐ अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर क़ुरबान, आपको क्या हुआ? आपने फरमाया, अभी मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत यानी मुसलमानों में से ही बाज़ लोगों की जमात मेरे इस बेटे को अनकरीब कत्ल कर देगी। मैंने पूछा, क्या इस बेटे को? आपने कहा, हाँ, याद रहे मुझे उस खाक ज़मीन की मिट्टी में से कुछ मिट्टी दी जो सुर्ख थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला भी बच्चे थे कि आक़ा दुआसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को उस जगह की मिट्टी अता फरमाई जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पानी थी। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों मेरे घर में रसूलुल्लाह के सामने खेल रहे थे कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ख़िदमत अक़दस में हाज़िर और कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपकी उम्मत में से एक जमात आपके इस बेटे हुसैन को आपके बादल कत्ल कर देगी और आपको वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी भी दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को अपने सीने मुबारका से लगाया और रोए और फरमाया, ए उम्मे सलमा, जब मिट्टी खून में बदल जाए तो जान लेना मेरा बेटा कत्ल हो गया। हज़रत उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को बोतल में रख दिया और वह हर रोज़ उसको देखती और फरमाती, मिट्टी जिस दिन खून हो जाएगी वो दिन अजीम होगा, सिर शहादतैन खसासिल कुबरा वगैरह पढ़िए। और इमाम हुसैन की शहादत की निशानदेही जगह की भी कर दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ यह इमाम हुसैन की शहादत से पहले खबर दी थी, बल्कि जिस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई उस मकाम की निशानदेही भी फरमा दी थी। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, मुझको जिब्रील अमीन ने

0: खबर दी, अखबरनी जिब्राहिला, कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद ज़मीन तफ में कत्ल कर दिया जाएगा और जिब्रील मेरे पास इस ज़मीन की ये मिट्टी लाए और उन्होंने बताया यही मिट्टी हुसैन का मदफन है। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से कई साल पहले सहाबा इकराम के दरमियान ये बात शोहरत पा चुकी थी, आपकी शहादत करबला के मकाम पर होगी। चुनांचे हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि बारिश के बरसाने पर मामूर फरिश्ते ने अल्लाह ताला से हुज़ूर सल्लम की खिदमत में हाज़िरी की इजाज़त मांगी, जो मिल गई उस दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा के घर तशरीफ़ फरमा थे। फरिश्ते की आमद पर रसूल सल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, दरवाज़े का ख्याल रखना, कोई अंदर दाखिल ना हो। इसी दरमियान में आपके दरवाज़े पर निगहबान थी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और बज़ोर अंदर चले गए, हुज़ूर नबी सल्लम के कंधों पर जा बैठे। रसूल सल्लम उनको गोद में लेकर चूमने लगे तो फरिश्ते ने अर्ज़ किया, क्या आप इसको महबूब रखते हैं? अल्लाह अकबर। नबी दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फरिश्ते ने कहा, बेशक आपकी उम्मत इसको कत्ल कर देगी, और अगर आप चाहें तो मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहां ये कत्ल किए जाएंगे। बस उसने अपना हाथ मारा और आपको सुर्ख मिट्टी दिखा दी। वो मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा ने ले ली और अपने कपड़े के कोने से बांध ली। रावी फरमाते, हम सुना करते थे कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस तरह देखा जाए तो हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत बचपन ही से मशहूर हो गई है, और ये सिर्फ इज़्ज़त व अज़मत इमाम अली मकाम के अलावा किसी शहीद को उससे पहले ना मिली और न उसके बाद आज तक और न क़यामत तक किसी शहीद को मकाम मिलेगा कि शहादत से कबल उसके बारे में ये शहीद होंगे, नबी गवाही दें। नबी अकरम बयान फरमाया, हज़रत जिब्रील बयान फरमाया, दीगर फरिश्ते बयान करें, तो इमाम अली मकाम की शहादत वो शहादत उज़्मा है जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसीलिए दुनिया का हर इंसान, वो शैदाए अहले बैत हो या दुश्मन अहले बैत है, शैदाए अपने हुसैन की मोहब्बत में मगन होकर मुहर्रमुल हराम का एहतराम करता है, और दुश्मन चिढ़ कर, लेकिन दुश्मन भी जानता है कि हुसैन की शहादत इसी मुकद्दस महीने में हुई, लेकिन अगर उसी दुश्मन अहले बैत से पूछ लो आपके वालिद कब मरे थे, दादा कब मरे थे, तो नहीं बता पाएगा, लेकिन शहादत हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन पाक की शहादत को लाखों सलाम, अज़मत अहले बैत को करोड़ों सलाम हो। अल्लाह तबारक तआला हमें मुहर्रम अल हराम के मुकद्दस महीने में इमाम अली मकाम अहले बैत की ताज़ीम और तकरीब सीखने के लिए मस्जिदों में जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ, अपने बच्चों को तारीख़ करबला और तारीख़ अहले बैत और असहाब रसूल की ताज़ीम और इज़्ज़त वक़ार सीखने और सिखाने का मौका हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा हों। अल्लाह ताला माह मुहर्रम की बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क मॉरिशस में अमन सुकून, आलम इस्लाम में रहमतों बरकतों का खजीना हो।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाइलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समाअत फरमाइए चंद ऐलानात। कल जुम्मा 26 जून सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिजविया पोर्ट लुइस निकोले रोड में शालापा की सरपरस्ती में यौम आशूरा के मौके पर एक नूरानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। और आज जुमेरात 25 जून बाद नमाज ज़ोहर अब्दुल रज़ाक प्रेयर हॉल फिनिक्स में सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में महफिल ज़िक्र का अहतमाम किया जा रहा है। और कल जुम्मा 26

जून सुबह 9:30 बैतुन्नूर सिद मौशाल में आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में आशूरा के मौके पर एक नूरानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है, और जुम्मा 26 जून सुबह 9:30 अलमदीना हॉल कॉफ़ फिनिक्स में उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में महफिल आशूरा का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

अफजल है गुलजहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। मौजूद सामईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:54 हो चुके हैं। हमें कुछ पैगामात मौसूल हुए हैं। जी हाँ, सलीम, रकीबा, रेहान, इस्माइल, जीवन और नासिर, नाजमा, महबूब नुतखदाम से एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। और नासिर और नाजमा महबूब नुतखदाम से उर्दू की पूरी टीम को यौम आशूरा की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसके अलावा हमें एक और पैगाम भी मौसूल हुआ है। जी हाँ, काथोबोन से हाजरा सुरैया निज़ार ने यौम आशूरा की मुबारकबाद पेश की है और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को हमेशा कबूल फरमाए। सैपोल से रेहाना और रियाज आशूरा की मुबारकबाद भेज रहे हैं और एक कलाम की फरमाइश भी की है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: हसी।
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ 2 घंटों का सुनहरा सफर इस बार मोसलमोस सेतांद्रे कम्युनिटी सेंटर में, जहां बेजितोंबो कोई राची और मोसलमोस सेतांद्रे एसोसिएशन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 26 जून दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही RM3 रेडियो मनोरंजन के फेसबुक पेज और टिकटॉक पर भी लाइव फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 26 जून को दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मोसलमोस सेतांद्रे कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।

बिल्कुल पौने तीन बज चुके हैं। ये है मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस यानी AM2 प्रसारण मीडिया में बात 19 किलोहर्ट्ज पर। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आज के इस पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर, जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं आशा करते हैं आप सभी मजे में होंगे और आज के सफर में जरूर दिल से हमारा साथ देंगे। तो बस हो जाइए तैयार, क्योंकि ये है आपकी पसंद का कार्यक्रम जहाँ पर आप ही के पसंदीदा गीतों को हम चलाते हैं और बेशक आप हमारा साथ दे सकते हैं 402-8085 पर, जहां पर आप अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर काम पर हैं तो मैसेज के द्वारा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5251705 पर। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस सुहाने सफर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ। वैसे कहते हैं ना कि जिंदगी अगर आप पर नींबू मारे तो भाई चिंता क्यों करते हैं, उस नींबू को काटकर मजेदार नींबू का शरबत बना के पी लीजिए। जिंदगी में तकलीफें चाहे हजार आए पर मुस्कुराना कभी ना भूलें।

0: आपकी पसंद।
1: भाई मुस्कुराहट किसी को देना उतना मुश्किल काम नहीं जितना हमें लगता है। जैसे हम आपके लिए गाना चलाते हैं और आप अपना नाम सुनकर कितना प्यार से मुस्कुराते हैं, है ना? देखा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर सेलू जी हमारे साथ है, एक वायोस से जो हमेशा साथ देती है और सभी पैंताया परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। बैजू बावरा का ये पुराना गाना उन्होंने मांगा है, तो चलिए आपके दिल की फरमाइश को पूरा करते हैं।

बस यूं ही इस जिंदगी के सफर में हम मिलते रहे आपका दिल खुश करने के लिए। चलिए यहाँ पर सीता देवी जी हमारे साथ कागोलिन से जुड़ चुकी है और सभी राम तोहल परिवार के नाम और खासकर उनकी पति की याद में उन्होंने मांगा है फिल्म मिलन का ये गाना मुकेश और लता जी की प्यारी सी आवाज़।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 2300 से ज्यादा परिवार मॉरिशस के सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने वाले हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से सहायता मिलेगी। 1 जुलाई से इसके लिए योग्यता की सीमा बढ़ाई जा रही है। बजट 2026-2027 में इसका ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य है जरूरतमंद परिवारों की मदद करना। अभी के लिए सोशल रजिस्टर में 5200 परिवार पंजीकृत हैं। अफ्रीकी इलाके में फिनटेक की दुनिया में मॉरिशस की पहचान मजबूत करना और इसके लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाना, ये मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटेजी 2026-2030 के मकसदों में शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका इस तकनीकी सहायता से ये दस्तावेज बनाई गई हैं। आज इसकी औपचारिक लॉन्चिंग की गई। व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा। पोटली में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई। उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका भी मिला। विदेशी समाचारों में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या के बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। मलबों तले दबे लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतें ढह गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मापी गई है। वहां आपात स्थिति की घोषणा की गई है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। 58 साल के 58 इयर्स ओल्ड के श्री दीपनाथ हरलुल जो शैलेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे मोगा फ्यूनरल पृथ्वीया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। रारोड बनमेया में 74 इयर्स ओल्ड के श्री रामदत्त कोकिल जो जीवन रामबो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम

0: चार बजे उनकी पत्नी कमला कोकिल के मकान रॉयल रोड बन में से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Seven days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.
2: Suhana safar aur ye mausam hasi. Suhana safar aur ye mausam hasi.
3: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ 2 घंटों का सुनहरा सफर, इस बार मोसलमो सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में, जहां बेजितोंबो कोई राची और मोसलमो सैतान्द्रे एसोसिएशन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 26 जून दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही RM3 रेडियो मनोरंजन के फेसबुक पेज और टिकटॉक पर भी लाइव फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 26 जून को दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मोसलमो सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।

मिलाते चले। इस समय बिल्कुल 3:05 हो रहे हैं रेडियो मॉरिशस के इस सफर पर। आपकी पसंद कार्यक्रम को दोबारा से जारी रखते हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। अभी से लेकर बिल्कुल 4 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं और सफर को हसीन बनाते हैं आप ही के पसंदीदा गाने। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज निर्जला एकादशी का व्रत, बहुत सारे लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में मीरा जी लाल माटी से मांगती हैं, ये फिल्म का गाना है लगान, और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ ये गाना जाएगा उनकी प्यारी नातीन शाइना के लिए। बेटा है प्रवीण, बहू है वंदना और उनके सभी परिवार के नाम।

कहीं सुख हो तब दुनिया वाले नजर आते हैं, पर जब दुख आता है तब केवल ऊपर वाला नजर आता है। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर अनीता जी भी हमारे साथ बहुत ही प्यार से जुड़ चुकी हैं त्रियोले से, और उनकी प्यारी बेटी अंजू, साथ है दामाद वेद, बेटा है सचिन, बहू पूजा, कियांश और सिया उनके नाती पुती, और उसी के साथ उनके पति की याद में उन्होंने मांगा है ये गाना। कहती हैं कि ये गाना किस फिल्म का है आपको याद नहीं, हम बताते हैं, ये है फिल्म देवर का गाना और लता जी की प्यारी सी आवाज। चलिए समय 3:11, 4 बजे तक जारी है आपकी पसंद का कार्यक्रम।

फिल्म है संबंध और ये गाना जाता है लीला जी की पसंद पर। बुआशेरी से वे साथ दे रही हैं और उनके सभी परिवारों के नाम कहती हैं। ये गाना बहुत कम सुनने को आता है। चलिए ओपी नैयर साहब का संगीत निर्देशन और आशा जी की प्यारी सी आवाज। फिल्म है संबंध।

भाई दुनिया वालों से दूर। जब कहते हैं ना कि दिल में कोई हो मजबूरी, तो हम अपनों के करीब रहना चाहते हैं, और यहाँ पर अपनों से करीब है रेहाना जी नोथदाम से, अपनी प्यारी सखी माला फाउदा को, जिन्हें वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत मिस कर रही थी जब से उनकी तबीयत नासाज थी, पर वे अब बहुत खुश हैं क्योंकि बिल्कुल एक ऐसी दोस्त जो दिल के करीब है वो बहुत ठीक हो चुकी है। ऊपर वाले से दुआ करती हैं, और साथ ही साथ सुरेखा जी भी साथ दे रही हैं फिल्म उजाला का।

ये गाना आपके नाम। चलिए इसी गीत के साथ राजन रघुपत जी भी हमारे साथ हैं लंदन से, ज्योति जी यूनियन पार्क से, प्रीति मयूर आदर्श वेदना विमला विवेक और अविष्ठा के नाम। और इस वक्त उमा जी भी हमारे साथ है क्योपिप से, भाई विष्णु को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती है जो 60 वर्ष के हो चुके हैं। रोज बेल से साथ दे रहे हैं। विष्णु भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।

गाने चाहे हो नए या पुराने, भाई आपका दिल खुश करना है, इसीलिए तो आपकी पसंद कार्यक्रम है। और इसी के साथ चलिए, यहाँ पर विश्वानी जी हमारे साथ हैं, विश्वानी दुमन वाकवा से। फिल्म संतान का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में मांगती हैं अपनी प्यारी बहनें इंदिरा, शारदा, सखियाँ हैं नीला और प्रतिभा, साथ है गीता गजाधर और शोभा जी के लिए।

आपकी पसंद का कार्यक्रम और चलिए हम लगे हैं आपके गानों की फरमाइश को पूरा करने के लिए। सुदेवी जी, आप भी हमेशा साथ देती हैं, वाकवा से कभी नहीं चूकती। परी, चलिए यही आपका प्यार और आपका बड़कपन है जो आप हमेशा प्यार से साथ निभाती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि नए नामों को भी हम कार्यक्रम में हमेशा शामिल करते रहें, पर हम आपका दिल भी हमेशा खुश करेंगे। और यहाँ पर आपकी प्यारी बहनें ललिता कुशल त्रियोले से, दीदी सुनीता, देवीना, बिंदु, संगीता, जीवराज और मलेंगा से हमारे साथ है याशना, साथ दे रहे हैं नीरज, लक्षिका, कृषिका, सभी राम रतन, राम गुलाम, कुआरू और रघुबा परिवार के नाम करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा पुराना सा गीत है हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में और फिल्म है 20 साल बाद।

इसी गीत के साथ नाम जोड़ते हैं हमारी प्यारी सुनीता जी का, जो इस वक्त हमारे साथ गांव गुब से जुड़ी हुई हैं। उनकी तीन प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना जी, जो हमेशा प्यार से साथ देती हैं।

प्यार है तो लोग लौट कर आ ही जाते हैं। यहाँ पर मानती जी दौड़ी दौड़ी चली आई और कहती है जल्दी जल्दी से मेरा नाम भी प्लीज इस गाने के साथ जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दिया, नुवेल फोन से आप साथ दे रही है बहुत ही प्यार से।

फिल्म है आरती और इस गाने की फरमाइश कर रहे हैं दूर से मनीता जी, जो फ्रांस से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, और उनकी प्यारी मामा है सुमांती, बहने हैं आरती, सचिता, रेखा, भाई है सत्यम और भाभी है उषा, जो रहते हैं सेंट जूलिया विलाज। लता जी की प्यारी सी आवाज़।

0: चलिए इस वक्त यहाँ पर ब्रह्मस्थान से उषा जी भी कहती है, प्लीज हमारा भी नाम ले लीजिए बहन शोभा, निर्मला, माधुरी, रेखा और भाभी रेशमा के लिए।
1: तो 100 फकीर हो गए।

और इसी के साथ फिल्म तकदीर का ये गाना बंधु परिवार के नाम त्रियोले से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में लाजवाब गीतों का सिलेक्शन जो आपके दिल से निकलकर हम तक आ रहा है, हम चलाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मानती जी, माफ़ कीजिएगा, मनीता जी हमसे कहती हैं अगर हो सके तो हमारी प्यारी कविता जी का भी नाम जोड़ दीजिए जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, गौंबुआ से वे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए कविता जी, दूर बैठी आपकी प्यारी सखी मनीता आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हैं।

चलिए यहाँ पर नसरीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वक्वा से, और सभी मुसलमान भाई बहनों को यौम अशूरा की ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार। आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहे, ऊपर वाले की असीम दुआ आपको यूं ही मिलती रहे। और चलिए इसी के साथ ये जो अगला गीत है, विद्या जी आपके नाम करेंगे, यूनियन पार्क से आप हमारा साथ दे रही हैं, चाची कुमारी, बहन सती, सुरेखा, बबीता और सुनीता के नाम। और वैसे ये गाना भरोसा फिल्म का नहीं पर सहरा फिल्म का है।

आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं और यहाँ पर नोएल फॉस से कूल एनजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी प्यारी बेटी स्वीटी, दामाद है संजीव और साविश के नाम। हम करेंगे ये अगला गीत जो है मुकेश साहब और लता जी की प्यारी सी आवाज में, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये गीत है।

0: कहीं खुशी कहीं गम, कहीं पर कहते हैं ना कि
1: मेरे घर आई
0: प्यारी सी एक ऐसी खुशी। और इस प्यारे से गीत की फरमाइश करती हैं शिमला जी, जो हैं बेलगूस से, बहन रूमा आरती, भाई है राकेश धीरज, बेटा नमलेश, बेटी कीर्तिना के लिए फिल्म कभी कभी का ये गाना लता जी की प्यारी सी आवाज में।

चलिए ऐसे मजेदार गाने केवल आपकी पसंद कार्यक्रम में बजते हैं, क्योंकि ये आप ही के पसंदीदा गीत है। और मैं आपको बताती चलूं, यहाँ पर बाहर का माहौल क्या लाजवाब है। हमसे एक दो जन ने आके ये कहा, ये एक बहुत ही खास कार्यक्रम है जहाँ पर सच में जो गाने हमें कभी सुनने को नहीं मिलते वो सिर्फ यही सेगमेंट में सुनने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंसेस है वो इतनी लाजवाब है कि क्या कहें, ढूंढ ढूंढ कर गाने लेकर आती है। और चलिए इन गीतों को चलाने में हमें भी जो मज़ा आता है क्या बताएं। चलिए यहाँ पर हमारे साथ है हमारी प्यारी गायत्री जी, जो सैपिया से इस वक्त हमारे साथ हैं। 1956 के जमाने का गाना है एक ही रास्ता, सुनील दत्त और मीना कुमारी इस में नजर आए थे, हेमंत कुमार और लता जी की प्यारी सी आवाज और उनकी प्यारी बहनों के नाम।

और उनकी प्यारी भाभी। और वैसे आज उनके पापा का जन्मदिन है, अगर आज वे होते तो 100 वर्ष से अधिक होते। पर चलिए, जहां हैं उनकी आत्मा आपको बस आशीर्वाद दे रही है। और लाजवाब ये गाना हम ये भी कहना चाहेंगे, ये हमारे प्यारे वेद प्रकाश तोरल जी, प्रोफेसर साहब जी का ये बहुत ही फेवरेट सा गाना है। अगर प्रोफेसर जी आप सुन रहे हैं तो ये गाना आपके नाम और आपकी प्यारी पत्नी चित्रा जी के लिए।

चलिए इसी के साथ जाने का समय हो चला है, पर बिल्कुल हम आपके नामों को जरूर जोड़ते हैं यहाँ पर। दिलीप जी, आप भी हमारा बहुत ही प्यार से साथ देते हैं, कुंगुमा से साथ दे रहे हैं, प्यारी पत्नी संगीता, साथ है योगेश, कविता और सभी सुनने वालों के नाम आपने इस आखिरी गीत की फरमाइश की। पर फिलहाल हम आपके लिए ये गाना छोड़े जा रहे हैं जो है इब्राहिम जी की पसंद पर, पोर्ट लुइस से वे साथ दे रहे हैं फिल्म प्यासा का गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो जाएगा। आप सभी ने बहुत दिल से, बहुत ही प्यार से हमारा साथ दिया, इसके लिए हम दिल से आपके बहुत ही आभारी हैं और बिल्कुल आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को, भूलिएगा नहीं 2:30 बजे रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और इसी के बाद सुमिता सरकार आपका साथ देंगी भक्ति सागर कार्यक्रम में, तो आप प्यार से उनको सुनिएगा अब और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या, मिलते रहेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: गुरुवार 25 जून घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। भक्ति सागर इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं। अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा होगा। और अभी से लेकर 5 बजे तक चलिए भगवान का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे साथ में मिलकर। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी, डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। अभी के लिए भगवान गणेश का नाम लेते हैं और कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं।

श्रोताओ, आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन भगवान साई की आराधना होती है, तो चलिए हम भी यहाँ पर साथ में मिलकर उनका ध्यान करते हैं।

0: चलिए अभी के लिए भक्ति सागर। इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं डॉक्टर शांति महावीर जी से कार्यक्रम पीयूष धारा। धारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
1: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के वक्तव्य का श्री गणेश करने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, महाराज दशरथ श्रेष्ठ रघुवंशी थे, धर्म की मूर्ति थे। हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, वे सदैव धैर्य जैसे श्रेष्ठ व्रत को धारण कर धर्म ध्वजा को ऊपर रखते थे। इसीलिए वे तपस्वी, श्रीमान और धर्मात्मा कहलाते थे। अपने सलाहकार और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को स्वीकारते हुए मोह त्याग करके अपने कुल की मर्यादा का पालन

करते हुए वे श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। महाकाव्यकार वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशः काकपक्षधरो धन्वी तंच सौमित्री रन्वगात। यानी कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों को अपने साथ लिए चले जाते हैं। आगे आगे वे स्वयं चलते हैं, उनके पीछे यशस्वी श्री राम चलते हैं और श्री राम के पीछे धनुष बाण लिए लक्ष्मण चलते जाते हैं। श्रोताओं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि महर्षि विश्वामित्र मारीच और सुबाहु को मारने के लिए राजा दशरथ से केवल श्री राम को मांगते हैं, परंतु उनके साथ केवल श्री राम नहीं जाते हैं, श्री राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण भी जाते हैं। जिस प्रकार शब्द और अर्थ दो दिखते हैं परंतु हैं एक, जिस प्रकार जल और तरंग भी दो दिखाई देते हैं लेकिन हैं एक, वैसे ही श्री राम और लक्ष्मण दो दिखाई देते थे परंतु ये दोनों एक ही थे। जिस प्रकार व्यक्ति को उसकी परछाई से कोई अलग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार श्री राम को लक्ष्मण से अलग करना असंभव था। रामायण महाकाव्य के अरण्य कांड में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रामस्य दक्षिणो बाहु नित्यं प्राणो बहिश्चरः। श्री राम और लक्ष्मण हमेशा एक साथ रहते थे, इनका हृदय एक था। लक्ष्मण श्री राम की दाहिनी भुजा थे, वे श्री राम के दूसरे प्राण के समान थे जो श्री राम के शरीर से बाहर रहकर कार्य करते थे। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने दाएं हाथ पर विश्वास होता है, सभी शुभ कार्यों को सिद्ध करने के लिए वह अपने दाएं हाथ का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार श्री राम को अपने अनुज लक्ष्मण पर अटूट विश्वास था। अपने सहोदर लक्ष्मण के बिना वे कुछ भी न थे। श्री राम और लक्ष्मण दो शरीर परंतु एक आत्मा थे। इसीलिए जब विश्वामित्र जी श्री राम को लेने आते हैं तब उन्हें पता होता है कि लक्ष्मण भी अवश्य साथ में चलेंगे। दोनों भाइयों को अपने साथ लिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जब सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं तब उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते हुए कहते हैं कि गृहाण वत्स सलीलम्मा भूतकालस्य पर्ययः मंत्रग्रामं गृहाण त्वं बलामति बलाम तथा। महर्षि विश्वामित्र श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम, मारीच और सुबाहु जैसे अति बलशाली और छली कपटी राक्षसों से लड़ने के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। बलाविद्या और अति बलाविद्या में पारंगत होना पड़ता है। इन विद्याओं को अगर तुम समझकर आत्मसात कर लेते हो तो न श्रमो न ज्वरो वातेन रूपस्य विपर्ययः। हे राम, तुम जितनी मर्जी परिश्रम करो तुम्हें तनिक भी थकावट नहीं होगी। ज्वर आदि रोग से तुम सदा बचे रहोगे। तुम्हारा सुंदर रूप हमेशा बना रहेगा। तुम रूपवान, विवेकी और बलशाली रहोगे। चाहे तुम सो रहे हो तो भी राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भूख प्यास पर तुम्हारा नियंत्रण रहेगा।

पृथ्वी पर ही क्या, तीनों लोकों में तुम्हारे समान बाहुबल में कोई नहीं होगा। इसलिए हे राम, तुम बला विद्या और अति बला विद्या ग्रहण करो। श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि थे, परम योगी थे, सब विद्याओं के विशेषज्ञ थे। श्री राम को यशवीर बनाने के लिए, उनकी कीर्ति संपूर्ण संसार में फैलाने के लिए श्री राम को दोनों प्रकार की विद्याओं से वे साक्षात्कार कराते हैं। और अपने भाग्य को सराहते हुए श्री राम एक आदर्श शिष्य के नाते उन विद्याओं को सहर्ष ग्रहण करते हैं। श्रोताओं, शिष्य योग्य गुरु की खोज करता है, परंतु योग्य गुरु भी योग्य शिष्य पाने की इच्छा रखता है। महर्षि विश्वामित्र आत्मस्वरूप को जानने वाले गुरु थे, इसलिए उन्होंने श्री राम को अपने शिष्य के रूप में चुना। शास्त्रों में एक आख्यान आता है जिसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण देवता से वार्तालाप करते हुए विद्या देवी याचना करती हैं कि ते शिवधीहि अस्मि माम रक्षा, कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका खजाना हूँ, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। जो व्यक्ति मेरा अपमान करता है, निंदा करता है, मुझसे ईर्ष्या द्वेष करता है, आप मुझे उससे बचा कर रखिए। उसके यहाँ मैं कभी न जाऊँ। अगर मैं ऐसे कुपात्र के हाथ में चली गई तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी। इसीलिए मुझे आप केवल उसके हाथ में दीजिए जो मेरा सम्मान करे, मेरा सदुपयोग करे। श्रोता भाई बहनों, सरस्वती माता केवल सुपात्र को, योग्य व्यक्ति को ही अपना आशीर्वाद देती है। विश्वामित्र जी योग्य ब्राह्मण थे, वेद के परम विद्वान थे, विद्या के रक्षक थे। उनके पास योग्य शिष्य को परखने की दृष्टि थी। विद्या देवी को बलशाली बनाने के लिए वे श्री राम जैसे सुपात्र को विद्या प्रदान करते हैं। उन्हें विश्वास था कि आदर्श शिष्य श्री राम विद्या पाकर अपना और संसार का उपकार करेंगे। कथा को अगले गुरुवार को हम आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर शांति महावीर जी से सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इस अगले भक्ति गीत से हम जुड़ते हैं।

जी हाँ, ईश्वर के रास की बात करें, ईश्वर की लीला की बात करें तो वो तो अद्भुत होती है। ईश्वर ही जानते हैं वो कब, कहाँ, क्यों और किस लिए करते हैं। लेकिन ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं, ईश्वर जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं, ईश्वर जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। और ईश्वर जो है ना, वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारे जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए कभी कभार हम देखते हैं ना कि हमें जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। कभी कभार ईश्वर हमें वो देते हैं जिसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है।

ये असीम शांति की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम से ही हो सकती है, ईश्वर के ध्यान से ही हो सकती है, ईश्वर के स्मरण से ही हो सकती है। और ईश्वर पर विश्वास करने से हमें वो सब कुछ मिलता है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। तो बस हृदय से ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और कार्यक्रम के इस अंतिम भेंट की ओर बढ़ते हैं। इस आरती के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह समाप्त हो जाएगा और भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बजे जो है आप पूनम की प्रस्तुति में सुन पाएंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। हमारी आपकी भेंट जल्द होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सभी को शुभ संध्या। ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर जुड़े रहिए, साथ देते रहिए।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius. सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:09 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। आज बाहर बारिश हो रही है और ऐसे सुहाने मौसम में सदाबहार गीतों का मजा और भी बढ़ जाता है। तो अगले एक घंटे बारिश की फुहारों और प्यारे नगमों के साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम। अगर आपको भी कोई आपकी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं जो कि लगे कि आज के माहौल के लिए बिल्कुल ठीक है, यानी कि थोड़ी सी बारिश का कोई गाना हो या कोई ऐसे रोमांटिक गाना हो जो आपको भी पसंद आए और सबको पसंद आए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5251005 पर। और अगर आपको कॉल करके बताना है तो आप बता सकते हैं अपना मैसेज 4028085 पर।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:21 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ यानी कि सदाबहार गीतों के साथ, और ये है आपका ही प्रोग्राम। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस समय खिड़की के पास खड़े होकर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। कई लोग चाय बना रहे होंगे और कई लोग रात के डिनर की तैयारी कर रहे होंगे, पर हम आपको इतना ही कहते हैं, जो भी काम कर रहे हो चेहरे पर मुस्कुराहट रखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा आपके अपने गाने। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, तो फेस भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश करिए। बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। शोभा जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं साथ और कह रही हैं कि बहुत ही अच्छा बाहर मौसम हो रहा है और बारिश तो बस क्या कहने बारिश के। मैं तो समझ ही सकती हूँ कि बारिश में मैं भी बाहर भीगती हुई आई हूँ। सुमिति जी साथ दे रही हैं और बहुत ही इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, और उन्होंने जो गाने की फरमाइश की वो मेरे पास ये वाला नहीं है। अगर आप दोबारा से कॉल करके मुझे बता सकें कोई और गाना तो बिल्कुल हम चलाएंगे। इब्राहिम जी साथ दे रहे हैं और उनको एक प्यारा सा गाना सुनना है। इब्राहिम जी आप अपनी तबीयत ठीक रखिए, चेहरे पर जैसे आप एक कहते ना मुस्कुराहट बड़ी सी रखते हैं और इतनी सारी विशेस करते हैं और सिर्फ मुझे ही नहीं सबके लिए वो इतने प्यार से बोलते हैं और हमेशा सभी को कहते हैं कि हमेशा सब खुश रहें, तो मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। सो नाइस, थैंक यू सो मच इब्राहिम जी आपके जुड़ने का। विश्वानी धुमन जी जुड़ी हुई और बहुत ही मज़े कर रही हैं, कह रही शायद ये प्रोग्राम मेरे लिए ही है। तो बिल्कुल विश्वानी जी अगर आप साथ हैं तो आप ही के लिए प्रोग्राम है। ललिता जी कौशाल फैमिली मलिंगा एंड राम रतन फैमिली के लिए सुदेवी जी ने एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, तो हम गाने चला रहे हैं बट आपको इतना ही कहेंगे, जो भी काम करो हंसते मुस्कुराते करो, एंजॉय करो, हमारे साथ जुड़े रहो क्योंकि आपका प्रोग्राम आपके साथ है।
2: 819 kHz, this is Radio Mauritius. Radio Mauritius.

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
1: 5:31 हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंजॉय कीजिए अपने गानों को। और एक मैं तो सच में ये बता रही हूँ, इतने सारे मैसेजेस आपके प्यारे प्यारे आते हैं, आपकी बातें सुनने को मिलता है, दिल खुश हो जाता है। और इसके साथ में मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सा बस रिलैक्स रखिए, क्योंकि मैं एक एक करके सबके मैसेजेस और सबकी बात सुननी होती है, तो नाराज़ नहीं हुआ करें बहुत ही प्यार से। मुझे भी अजीब सा लगता है कि मैं किसको मना करूँ, या कभी किसी के गाने नहीं होते हैं तो बस प्यार से मुस्कुराते हुए जितने भी आप गाने बोलेंगे एक घंटे में मैं तो चलाऊँगी। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं चाचा महीन और वो बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश कर रहे हैं, हम बिल्कुल चलाने वाले हैं। ललित जी यूएसए से हैं, उनको भी एक प्यारा सा गाना सुनना है। साथ में सीधा जी जुड़ी हुई हैं साथ में, वो भी बड़े प्यार से उन्होंने ब्यूटीफुली बात किया और उन्होंने कहा कि मेरा गाना अगर आप चला सकते हैं तो ज़रूर चलाइएगा, अगर समय ना मिले तो नहीं चलाइएगा। सच ए ब्यूटीफुल मैसेज, सच में ऐसे ही होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आपके सभी के गाने एक एक करके चलाएं, तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने। और मैं तो चाहती हूँ आप अपनी पूरी लिस्ट भेजें, पर मेरे पास सिर्फ एक घंटा होता है और एक घंटे में मैं किस किस के गाने चलाऊंगी, तो इन्जॉय कीजिएगा जो भी गाने हैं सारे आप ही के हैं। सच में उस ज़माने में कहते हैं कि एक्टर्स इतना मेहनत करते थे अपने कामों पे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपने हेयर स्टाइलिंग पे, अपनी चीज़ों पे, और वो बहुत ही जो भी उनके घर में वो मतलब घर में स्टिच करते थे। आज के एक्टर्स को बाहर बहुत सारी चीज़ें खुद खरीदनी पड़ती हैं और कहते हैं प्रोडक्शन उन्हें देती है, पर पहले ज़माने में सब कुछ खुद लेकर आना पड़ता था, खुद स्टिच करना पड़ता था। एक्टर्स खुद अपनी पेरेंट्स से सिलवाते थे और देखो वो क्या मूवी बनाते थे, 5-5-6 साल एक ही मूवी में लगता था टाइम। और उनको देखिए तभी ये जो गाने हैं ना हमारे दिल के करीब हैं, और ये मूवीज़ हमारे दिल के लिए इसीलिए करीब हैं क्योंकि हमारी चीज़ें और वो टाइम जो है मैच करता है, और यही प्यार और यही वफा जो है उनके साथ हमारी है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं इतना आपको इंतज़ार होता है अपने गानों का, तो वैसे ही हमारे को आपके मैसेजेस और कॉल्स का। तो बस हम इस गाने के बाद फिर से कॉल्स और मैसेजेस लेंगे, बस इंजॉय कीजिए अपने गाने। ये है प्यारा सा जो मूवी है हमराही मूवी के, गाना बहुत ही सुंदर है, एंजॉय कीजिए।
2: 819 kHz, this is Radio Mauritius. Radio Mauritius.

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
1: 5:41 हो चुके हैं दोस्तों, और दिन भर की भाग दौड़ के बाद थोड़ा सा टाइम आपके लिए मिला है। और मुझे लगता है कि दरवाजे पर लिखा होता है कभी कभी कि कौन आएगा, ये सच बात है। और हमारे दिल पर भी लिखा होता है कि कौन सा गाना चलेगा, और हमारे दिल की जो कहते हैं ना एक फरमाइश होती है वो आप हमें बताते हैं और हम चलाते हैं यहाँ पर। और इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देवी जी, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, तो हमारे को गाना तो मिल गया और बिल्कुल चलाने वाले हैं। सविता जी भी साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश कर रही हैं। सुनीता जी और अमृता जी दो बहनें हैं और बहुत ही खुशी से गाने सुन रहे हैं और कह रहे हैं मुझे कोई गाना नहीं बताना क्योंकि गाने तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, सभी की पसंद बहुत अच्छी है। बट कहती हैं मैं जल्दी से लालो बना रही हूँ और वो मेरी जल जाएगी, इसलिए मैं छोटा सा बस हेलो करने के लिए आई हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगा था। ऐसे हंसना हंसी मजाक चलता रहता। साथ में एक और हमारे दोस्त हैं, लिसनर हैं, कहती हैं कि मैं लेंटिल्स बना रही थी और बस फटाफट से मैंने बोला एक पूनम जी को कॉल कर लूँ। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपके कॉल आना और एक सिर्फ छोटी सी बात हो जाना यही बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच आप सबके जुड़ने का, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी खुशी के लिए। तो भाई एक प्यारा सा गाना है कश्मीर की कली, ये वाला गाना सुनते हैं, उसके साथ साथ इंजॉय करते हैं बातें भी और आपके मैसेजेस भी। तो चलिए सुनते हैं ये वाला गाना।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:48 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम सदाबहार गीतों के साथ। मुझे पता है घर लौटने का एहसास कितना प्यारा होता है। बस घर में आके अपने पेरेंट्स का चेहरा देखना, अपने बच्चों का चेहरा देखना, वहाँ पर ही सारी थकान उतर जाती है और एहसास होता है कि घर कितना अच्छा लगता है। कैसा भी बाहर अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे लोग हों, जितना मर्जी कुछ हो, बट अपना छोटा सा घर हो, चाहे प्यारा सा घर हो, चाहे उसमें कुछ सामान ना हो, खाली हो, खोखला हो, कोई बात नहीं, बट जहाँ पर अपने परिवार के सदस्य होते हैं पे बहुत अच्छा लगता है। और ये शाम जब माँ बाप अपने बच्चों का चेहरा देखते हैं, उनकी भी थकान उतर जाती है। तो अगर आप सब में भी ऐसी फीलिंग आ रही है इस टाइम और अपने आप के बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस इंजॉय कीजिए गानों को, थोड़ा सा मुस्कुराइए और अच्छा सा खाइए। और हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं लीला जी, जो कि बॉशरी से हैं, और उन्होंने भी यही बताया, मैं गाने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मेरे प्याज जल गए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज क्या हो रहा है भाई, सारे जले जलों की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक ठीक से अच्छे से खाना बनाओ। उसके साथ में अनीता जी बेल से हैं और कह रही हैं कि मेरा बेटा एक गायक है, रितेश है उसका नाम, और वो भी इस प्रोग्राम को इतना इन्जॉय कर रहा है। तो मैं रितेश जी को थैंक यू बोलूँगी। जो गायक होते हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है, उनकी कला अलग होती है, उनका जो रियाज़ होता है बहुत ही अलग होता है। तो बस आप इन्जॉय कीजिए गाने और साथ में रियाज़ करते रहें और एक बहुत बड़े गायक बने, हम तो आपको शुभकामनाएँ ही दे सकते हैं। माला जी, माला जरी जी और विद्या जी साथ जुड़ी हुई हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, बट टाइम ना होने की वजह से उनका शायद नहीं चल पाएगा, बट फिर भी जो भी गाने मैं यहाँ पर ले सकती हूँ आप सबके ले रही हूँ। इंजॉय कीजिए आपका ये गाना।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:54 हो चुके हैं दोस्तों, चलते चलते बस इतना कहूँगी, यूं ही मुस्कुराते रहिए और सदाबहार गीतों का साथ निभाते रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम, अब मुझे दीजिए इजाज़त, 6 बजे आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार। नमस्कार।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा अपना और मुस्कुराते रहिएगा। ये दो गाने आखिरी आप सबके लिए।
1: 819 kHz. This is Radio Marches. Radio Marches.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ब्रिटेन ने एक बार फिर शागस समझौते के प्रति अपना समर्थन दिया है। अटर्नी जनरल लॉर्ड हर्मन ने कहा कि लेबर हाफ पार्टी इस समझौते को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट किया कि मीन्स टेस्ट प्रणाली को हटा दिया गया है। विपक्ष नेता जोरेशों गौ के PNQ का जवाब दे रहे थे। आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार पर गठित विशेषज्ञ आयोग के सदस्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने आयोग से शुरू किए गए काम को पूरा करने का अनुरोध किया। विदेश में वेनेजुएला में आए लगातार 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। अब तक 32 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। केयर स्टार्मर के बिना ब्रिटेन की सरकार ने एक बार फिर शागस समझौते के लिए अपना समर्थन दिया है। ये समर्थन ब्रिटेन के अटर्नी जनरल लॉर्ड हर्मन ने कल जस्टिस कमेटी के सामने अपने बयान के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी शागस समझौते को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लंदन, पोर्टली और वाशिंगटन इस समझौते से जुड़े विधेयक को दोबारा संसद में पेश करने की तैयारी पर मिलकर काम कर रहे हैं। लॉर्ड हर्मन ने उम्मीद जताई कि आने वाले हफ्तों और महीनों में इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए शागस डील को रुके हुए लगभग 1.5 वर्ष हो चुके। ये समझौता उस समय अटक गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका विरोध करते हुए वीटो जैसा रुख अपनाया। उस समय कई लोगों का मानना था कि इस दस्तावेज को अनिश्चित अवधि के लिए अलग रख दिया गया और इसे फिर से आगे बढ़ाने के लिए एक नई विधायी प्रक्रिया शुरू करनी होगी जिसकी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं। इस बीच हाल ही में ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हर्मन ने न्याय संबंधी संसदीय समिति के सामने इस संधि पर संभावित समय सीमा के बारे में जिक्र किया।
3: आई वेरी मच होप दैट इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स वी आर एबल टू साइन द ट्रीटी अगेन बिकॉज़ इट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री टू डू सो बिकॉज़ ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी concerns and the importance of the base in that part of the world. As you know, although the United States started off supporting under President Trump the deal, there has been a change of position. We remain determined to try and get it done.
2: इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संधि से संबंधित विधायी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। इसी महीने की शुरुआत में बरतानी मंत्री स्टीफन डाउटी ने विदेश मामलों की संसदीय समिति को बताया था कि बरतानी सरकार पोर्टवी और वाशिंगटन के साथ मिलकर इस विधेयक को दोबारा संसद में प्रस्तुत करने पर काम कर रही हैं। ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक पुनर्गठन के बीच सरकार की इन मंशाओं ने पोर्टवी को भी सतर्क कर दिया और अब निगाहें 10 डाउनिंग स्ट्रीट की अगली पहलों पर टिकी हैं। इन घोषणाओं के अगले ही दिन शागस समझौते के सबसे प्रबल विरोधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इनमें पूर्व कंजर्वेटिव मंत्री प्रीति पटेल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हर्मन की टिप्पणियों के बावजूद कंजर्वेटिव पार्टी इस शागस समझौते का कड़ा विरोध जारी रखेगी।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट किया कि मीन्स टेस्ट प्रणाली को हटा दिया गया है। वे विपक्ष नेता जोलेशों गांव के PNQ का जवाब दे रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में

0: apply individually to eligible beneficiaries based on their taxable income above a threshold of 14,000 rupees. This threshold, Madam Speaker, of 14,000 rupees, that is the World Bank relative poverty line of 50% of median income, which is 28,000 rupees in 2025, was. Fourth, a person will be able to elect to receive the SEP from the age of 60 to 70. The pension amount will increase by 9% for each year that the benefit is deferred beyond the age of 65. The recommendation seeks to bring fairness by providing individuals with greater choice, they have a choice, regarding the timing of the benefit while improving the long-term sustainability of the pension system. From 1st of July 2027, there will be revamped mandatory national contributory retirement scheme to replace the defunct National Pensions Fund.
1: विशेषज्ञों की समिति के सदस्यों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में जोले जोंगा के एक सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ऐसे मॉरिशस वासियों को चुना है जिनके पास विशेषज्ञता है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद सदस्यों ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने उनसे ऐसा न करने के लिए कहा।
2: बजट 2026-2027 में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक और कदम उठाया गया है। सोशल रजिस्टर ऑफ मॉरिशस में 2,300 से ज़्यादा नए परिवारों को शामिल किया जाएगा ताकि वे नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की सामाजिक सहायता का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही इस योजना का लाभ पाने के लिए तय की गई आय सीमा को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाना है। मॉरिशस को अफ्रीका में एक प्रमुख फिनटेक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नया कदम। इसी उद्देश्य से नेशनल फिनटेक स्ट्रेटेजी 2026-2030 की औपचारिक लॉन्चिंग की गई। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका के तकनीकी सहयोग से इसे तैयार किया गया है। लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर, वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों से भारी तबाही हुई है। अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सबसे अधिक नुकसान देश के उत्तरी हिस्से में हुआ है जहां कई इमारतें ढह गई हैं। राजधानी में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। कई स्थानों से लोगों के में दबे होने और मदद के लिए पुकारने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दोनों भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। दोनों झटके 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल पर हुए। दूसरा भूकंप वर्ष 1900 के बाद देश में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। दोनों भूकंप जमीन की सतह के काफी करीब आए जिससे झटके बेहद तेज महसूस किए गए और व्यापक नुकसान हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने प्रारंभिक आंकलन में आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या काफी बढ़ सकती है। एजेंसी ने इस भूकंप के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जो सबसे गंभीर भूकंपों के लिए जारी किया जाता है। इस बीच कई देशों ने वेनेजुएला को खोज एवं बचाव दल, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री भेजने की घोषणा भी की है।
2: और वर्ल्ड कप की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने रच दिया इतिहास। दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम 16 में शानदार अंदाज में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये यादगार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण की आज आखिरी रात है। अंतिम 16 में जगह बनाने की दौड़ अब भी रोमांचक मोड़ पर है। हर टीम के लिए हर अंक बेहद अहम है। कुछ टीमें अगले दौर में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कुछ का सफर आज रात समाप्त होगा। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: पूर्व से पाए जा रहे बादल धीरे धीरे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं की लहर बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात बादल घिरे रहेंगे और देश भर में बारिश होगी। कभी कभी जोरदार से सामान्य बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर, और बादल भी गरज सकते हैं। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे जिसके कारण दृश्यता कम होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह बरसाती मौसम रहेगा, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद को धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। विपरीत हवाओं के कारण जनता से रास्ते पर सावधानी बरतने की मांग की जाती है और ऊंचाइयों पर काम करने से परहेज करने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। फिर भी कल दिन के दौरान धीरे धीरे दक्षिणी लगूनों की स्थिति में सुधार आएगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:40 बजे पर सूरज ढल जाएगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

शोक समाचार सुनिए। ला रुई कुवां क्यूपिप में, ला रुई कुवां क्यूपिप में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्डर के श्रीपन सामी रासेन जो कुमारन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थ ही कल सुबह 9 बजे उनके मकान ला रुई कुवां क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। जुवांस देपिने में 26 साल की 26 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उर्वशी राम सिंह पैदाशी नाम गुचन और जो सेशना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद उठाई गई। रामसुंदर लेन सुल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा में तिरपन साल के 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ईश्वरी जालिम पैदाशी नाम आगाती और जो गीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति राजेश जालिम के मकान रामसुंदर लेन सुल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। विक्टोरिया लेन रोशनुआ में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री संजीव ओहिसिंकला आपादू जो संजीव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ राधिका ओहिसिंकला आपादू के मकान विक्टोरिया लेन होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपनाथ हरलोल जो शैलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ

थी। कल दिन के 1 बजे मोहा फ्यूनरल पिची त्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। चातागुन लेन लिस्कालिये में 67 साल की 67 years old की श्रीमती संताबाई कुशनिया गणेश, पैदाशी नाम कुशनिया और जो सांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे मोहन गणेश के मकान चातागुन लेन लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासा कारोंग लिस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। तमिल टेम्पल रोड लाघेमा सेंट पियर में 74 साल की 74 years old की श्रीमती सरादंबल मुथिया, पैदाशी नाम मुथिया और जो देवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे सदासिवन मुथिया सिवन के मकान तमिल टेम्पल रोड लाघेमा सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल की 76 years old के श्री सुलेश गोकुलक जो SSR अस्पताल में पूर्व अटेंडेंट थे और जो सुलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस शुक्रवार 26 जून को थोदोदूस आर्य समाज में शाम के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे। सत्यार प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में मौसलमा सैतौंद्रे आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 39 शुक्रवार 26 जून को शाम 4:30 बजे यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। सत्यार प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में टोमासेक रिवकुआ आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 27 शुक्रवार 26 जून को शाम 6:00 बजे से रात्रि के 8:00 बजे तक यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है।

सभी श्रोताओं को हमारा सप्रेम नमन है। जय श्री राम। एमबीसी रेडियो मॉरिशस के सभी श्रद्धालु का हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में भजते प्रभु का नाम। मैं हूँ देविना और हम सब प्रभु भक्ति के मधुर सागर में डुबकी लगाएंगे एक साथ। भजन वंदना, आध्यात्मिक विचार तथा प्रभु स्मरण के साथ यह संध्या और भी मंगलमय बन जाएगी। श्रोताओ, मन चिंताओं से भर जाता है ऐसे समय में प्रभु का नाम वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। ईश्वर का स्मरण मन को शांति शक्ति प्रदान करता है। जब तक मनुष्य स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित नहीं करता तब तक उसे सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। तो आइए प्रभु के चरणों में अपना मन अर्पित करें तथा इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं इस गणेश

0: कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। सचमुच ईश्वर को केवल संकट में नहीं बल्कि हर पल याद कीजिए। जब जीवन में सुख हो तब कृतज्ञता, तथा दुख हो तब श्रद्धा, यही सच्ची भक्ति है।
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: आप सुन रहे हैं बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस पर। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, परंतु याद रखिए, प्रभु की घड़ी हमारी घड़ी से अलग होती है। वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है तथा सही समय पर देते हैं। इसलिए कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखना वायु को देखने जैसा नहीं, बल्कि उसे महसूस करने जैसा है।

श्रोताओं, भगवान के मंदिर तक पहुंचना आसान है, परंतु भगवान को अपने हृदय में बसाना ही सच्ची साधना है। यदि हमारे व्यवहार में विनम्रता, वाणी में मधुरता तथा कर्मों में पवित्रता है, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। प्रभु को महंगे उपहार नहीं, निर्मल हृदय प्रिय होता है। चलते हैं अगले भजन।

जी हाँ श्रोताओं, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय की गहराइयों से की जाती है, ये हम बार बार कहते हैं। जहाँ विश्वास है वहाँ आशा है, जहाँ आशा है वहाँ आनंद है, तथा जहाँ आनंद है वहाँ ईश्वर का वास है। इन्हीं दिव्य विचारों तथा मधुर भजनों के साथ आज के कार्यक्रम भज ले प्रभु का नाम से हमें दीजिए अनुमति। ईश्वर आपके जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य तथा समृद्धि बनाए रखें। अगले कार्यक्रम में पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक प्रभु का स्मरण करते रहिए, मुस्कुराते रहिए तथा सकारात्मक बनते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशरियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से खैर व आफियत से हैं। आइए महफिल शब की इब्तिदा इस हमद से करते हैं।

हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अहले जाहिलियत आशूरा के दिन को ईद बनाते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस दिन रोज़ा रखा करो। इस्लाम ने आशूरा के दिन को फजूल रस्मों की बजाय इबादत और रोज़े का दिन बनाया। मुसलमान को चाहिए कि वो उस दिन को नेकी और इबादत में गुजारे।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के लिए एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देता है। नफली रोज़ों की बड़ी फजीलत है, खसूसन मुहर्रम के रोज़े अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया बनते हैं। आशुरा के रोज़े की फजीलत तो और भी ज़्यादा है। मोहतरम सामीन, दिल से दुआ है हमारी कि कल का दिन आप सभी के लिए बख़ैर गुज़रे और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता करे, जिन्हें वो अपने दरबार में अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से शर्फ़ कबूलियत अता करे। आमीन सुम आमीन। इसी नेक तमन्ना के साथ समीर आपसे रुख्सत की इजाज़त तलब करता है। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। अपनी दुआओं में मत भूलना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: MBC TV programs की झलकियाँ।
4: ये तमाशा नहीं, फैसला है भैया।
5: इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ राणा महेंद्र प्रताप को है।
4: जिस घर में मैं अपनी मर्जी से जी न सकूं, ऐसे घर को ठोकर मारकर जा रही हूँ मैं।
6: कभी ना इम्तिहान लेना, यूं प्यार में सच्चों का, मोहब्बत ने झुकाया है सर अच्छे अच्छों का।
7: नजरें मिली, दिल धड़का मेरी।
0: शनिवार 27 जून को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म राजा 1991 की ये मूवी माधुरी दीक्षित और संजय कपूर पर फिल्माई गई रोमांटिक मूवी राजा। एमबीसी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
8: मेरी लाइफ बिल्कुल इजी और स्ट्रेस फ्री है क्योंकि कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। जो भी करना है करता हूँ।
9: तुम मुझे गाड़ी से निकाल रहे हो?
8: You gotta go.
9: Why?
8: Because I've gotta go. Go.
9: Asshole.
8: Simple.
10: मान के हम चले तो ये जो थोड़ा शिकवा।
0: रविवार 28 जून को NBC3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म आई मी और मैं 2013 की ये मूवी प्राची देसाई और जॉन इब्राहिम पर फिल्माई गई आई मी और मैं।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 25 जून 2026 के बिफे के रात था और 9:05 होलबा। हम किरण आप सब कोई के आज के भोजपुरी तड़का में स्वागत करत है। हमार सप्रेम नमस्ते स्वीकार कर। आज ठंडा थोड़ा जस्ती बा और हर जगह थोड़ा पानी जस्ती बरसता, तो ऐसन में आपके चाहिए अपन ख्याल रखे के। और अगर ये बखत आप घर से बाहर हवा तो आपके चाहिए और भी ज़्यादा सावधानी बरते के, और आपके ये 2 घंटा के सफ़र बहुत अच्छा से कटी, ये बात के ख्याल आज हम रखे होला है। तो चला आपके अपन मन पसंद गीत सुना नोयन के आवाज़ में बाजा बोल आप सब कोई के नाम, और फिर आपके फरमाइश भी चलते रही।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: दारू की दुकान पड़ती होगी कभी घर के आसपास?
3: घर के थोड़ा आगे चल के
2: बाई तरफ,
3: दाई तरफ है।
2: आते वक्त तो बाई तरफ पड़ती होगी ना।
4: हर कुत्ते का दिन आता है, कुकू का भी आएगा और सब बदल जाएगा।
5: बातें बची बहुत बताने के लिए, जिंदगी तेरे संग बिताने के लिए।
0: रविवार 28 जून को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुकु माथुर की जंड हो गई। 2014 की ये मूवी सिद्धार्थ गुप्ता और सिमरन कौर पर फिल्माई गई कुकु माथुर की जंड हो गई।

रात के 9:16 होल बा और आप लोग भारी संख्या में सुनत हवा जा, फोन करत हवा जा, आपके फरमाइश खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात के हम पूरा ख्याल रखब कि जितना गीत के मांग करत हवा जा वो सब गीत चली। अगला गीत पियर पियर ऊँठी के हरियर नगिनवा दिव्या रघु के आवाज़ में। ये गीत सुने चाहत हवन शीला, और शीला जी ये गीत अपन पति के साथ सुनत हवन सुरेन, और पूरा परिवार जे मॉरिशस में हवन जा, मॉरिशस के बाहर हवन जा, सब

एटी दामाद नाती पोता सबके नाम आप करत हवा ई अगला गीत और ई अगला गीत कोंगोमा के विमाला के नाम उनकर बहिन सुनीता के ओर से जे घोंगुप से हमनी के सुनत हवन और अक्सर सुनते रहेलन।

साथ किरण संगे। रात के 9:22 होलबा और हमने के साथ रही हमेशा की तरह रात के 11 तक। ये 2 के सफर आपके ही पसंद के गीत पर आधारित रही और आपके पसंद के गीत के फरमाइश आई में देरी नहीं कर लेबा। आप सब कोई के फरमाइशी गाना के लिस्ट हम फिर से बनाए ले जाते हैं। अगला जन गीत चली सब दामाद लोग के नाम और दामाद लोग के ओर से सब सास लोग के नाम। हंसले ये गीत खास तौर पर अपन सास के नाम करत हवन। कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में दामाद बाबू।

0: कुणाल बाबूलाल के आवाज के बाद इजन अगला गीत चली ज्ञान महिपतलाल के आवाज में, एकर मांग कर ले हवन बेलिया से आत्माराम जी। और आत्माराम जी अपन चार गो बहिन के नाम ई गीत करत हवन, सुदेवी, ललिता, प्रभावती और छोटी के नाम। और ई गीत सुने के ढेर कोई खुशी रहेला जा, और आप में शामिल हवा बशहरी के धनी जी। तो आप सब कोई के नाम ई अगला गीत खास तौर पर जिज्ञान मोहिपतलाल के आवाज के दीवाना हवा जा।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

स्वर्गीय ज्ञान महिपतलाल के आवाज में ई सुंदर गीत अभी सुनला। और अगला जन गीत चली वो एगो फीमेल वॉइस में रही और ई भी आवाज बहुत सुंदर आवाज बा। संभावती दुमन के बात करत है जा। इनकर सुंदर गीत नाको के फुलिया गिरत त गिरे दे। ये गीत सुनने चाहत हवन ललिता जी। और हमेशा के तरह ललिता जी अपन सब भाई लोग के नाम ये गीत करत हवन, जिनकर में आत्माराम और हरीश भैया हवन, फिर सब बहिन लोग के नाम, बहिन लोग में बा उनकर सबसे पहले तो उनकर सुदेवी दीदी, फिर ज्ञानी हवन, फिर छोटी प्रभावती और माला राम जावन भी हवन और सुखलाल मौसी। तो ललिता जी के ओर से आप सब कोई के नाम ये अगला गीत और जितना कोई भी संभावती दुमन के आवाज़ खुशी रहे लजा और उनकर गाना भी पसंद करे लजा। तो आप सब कोई के नाम ये अगला गीत।

आज 25 जून के जितना कोई के भी जन्मदिन बा, आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के ओर से जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। और आज ही नहीं बल्कि काल जे लोग के जन्मदिन रहल, काल जे लोग के जन्मदिन रही, आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई।

आज की रात देखा था जा कि ठंडा कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ था और सर्दी के मौसम बा, ये सर्दी के असर अब नज़र आए लगल बा दो तीन दिन से, और थोड़ा बहुत पानी भी बरसता, कहूँ थोड़ा जस्ती बरसता, लेकिन ऐसन में कोई के मन बा सुने के पानी नहीं बा। और ये गीत के फरमाइश आलबा फोंजुसाक से, फोंजुसाक से उमा जी ये गीत रिविया जुरांपा के आहना और वाकवा के आरोही के नाम मांगत हवन। तो चला एक साथ सुनी जा पानी नहीं बा, लेकिन असल में पानी बरसे के शुरू हो गल बा।

0: और जब पानी की बात चलते ही बात, मच्छी की भी बात करी जा। मच्छी मरुआ जय हरलाल के आवाज़ में ये गीत सुने चाहा था वन भाई अब्बू। और हमेशा की तरह भाई अब्बू ये गीत वाकवा से आप फरमाइश करा था वा अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस कालाचोटी के नाम और साथ में आपके दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम और पूरा रेडियो टीम के नाम और जितना कोई इबकत काम करत हवा जा आप सब कोई के नाम ई गीत भाई अबू करत हवन। साथ में वाकवा के सुदेवी जी के ओर से उनकर सब बहिन सब परिवार के नाम, थियोले के कुशल परिवार, आत्माराम भैया, सुनीता दीदी, शोभा देवीना, मालेंगा के रामरतन परिवार, राम गुलाम कोतवारू परिवार और जितना कोई भी ये बखत ये प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के नाम।
1: RM3 Radio.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10 बज कर बा और अभी से और एक घंटा तक हमने के सफर साथ में चली। अगला जन गीत चली एक बार फिर कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में एक बहुत ही मशहूर गीत नया सिरे देखा थे जा। एक बार फिर हमने के देश में ठंडा के मौसम चलाल बा, ढेर कोई के ये मौसम बहुत पसंद है तो एक जो बुरा असर बा वो भी पड़े के थोड़ा शुरू हो गल बा। आपके चाहे अपन स्वास्थ्य के थोड़ा जस्ती ख्याल रखे के सर्दी खांसी जुखाम तब वो सब लग ले जाता और ऐसन में घर के एगो परिवार जे बीमार पड़ल तब पूरा परिवार सकी बीमार हो जाए। ये खातिर आपके हर मुमकिन कोशिश चाहिए करे के ताकि कोई बीमार नहीं पड़ी और जे पर भी जाए तो आपके चाहिए ये बात के ख्याल रखे के कि आप इतना अपन खुद के ख्याल रखबा कि दूसरा बीमार नहीं पड़ी और ऐसन में चाहिए ढेर ठंडा पानी में नहीं निकले के रात के बखत ज़रूरी नहीं रही तो बाहर नहीं जा और भोजपुरी तड़का सुना अपन घर में लेकिन ये बखत ढेर कोई गाड़ी चलाते चलाते भी बीच सीमा में सुना था वंजा। आप सब कोई के नाम ये सुंदर गीत मशहूर गीत नया सिरे।

आवियों की बात छोड़ा, कहे कि दूसर देश में तो लू चलता, मॉरिशस में ही रही जा और यहाँ पर रिमझिम पानी बरसता, ठंडा ठंडा हवा चलता और ऐसन में रात के नींद भी अच्छा लगता। तो विनोद शिवदत्त की आवाज़ में ऐसन ही एगो गीत पन्निया बरसल बा, ये गीत सुने चाहत हवन तेहूर से शांति जी। और शांति जी अपन मराठी परिवार के नाम जे लोग दागोचिया से हवन जा, और अपन दागोचिया से अपन भगिना ओम के नाम ये गीत करत हवन, और साथ में आप बोलत हवा कि ये गीत आप ख़ास तौर पर हमार नाम करत हवा। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। चला पनिया बरसलबा एक साथ सुनी जा।

अगला गीत विष्णु हरी के आवाज में ये गीत सुने चाहता वन वाकवा से विश्वानी दोमन और विश्वानी दोमन ये गीत अपन दुगु बहिन शारदा इंदिरा और फिर मीला प्रतिभा और गीता गजाधर के नाम करत हवन।

रात के 10:25 हो गल बा और लगभग आधा घंटा में भोजपुरी तर का प्रोग्राम समाप्त हो जाए, लेकिन पूरा आधा घंटा बा हमने के सामने। और अगला जो गीत चली ओ बलमा, श्वेता बाबूला के और किशोर किमिया के आवाज़ में। ये गीत सुनने के चाह रखा वन पितों से अमृता गणेश जी। और अमृता जी गीत स्नेहा, सोनिया परी और पूरा गणेश परिवार के नाम करा था वन, साथ में विशान और मीनाक्षी के नाम खास तौर पर। तो आपके साथ मोतायलों के गीता जी भी अभी हमने के सुना था वन। गीता जी ई जन अगला गीत चली सुंदर गीत ओ बलमा आपके भी नाम। और फिर एकर बाद गीता गजाधर के आवाज़ में एगो दूसर गीत चली माँ बाप के मोल पर। और जब वो गीत के बारी आई तो ओकर फरमाइश पर जस्ती बोलब जा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

0: भोजपुरी की धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: भोजपुरी तड़का के अंत तक हमने लगभग चला है जा और आधा घंटा से कमती समय बा। और ये अगला जो गीत चली गीता गजाधर के आवाज में, ये गीत सुने चाहत हवन फ्लिक ऑफ लक से अनीता जी। अनीता जी ये गीत अपन पति राज और बेटा अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, आशिमा, उनकर पोती हिमेशा, आध्या, पोता अंश और रेजो मॉरिशस के और रेजो मनोरंजन के और एमबीसी के पूरा टीम के नाम करत हवन। तो चला गीता गजाधर के आवाज़ में माँ बाप की मोल।

0: जेकरा जेकरा नैहर जाए के बा उनकर खातिर लुत्तो मंगा द और रात के देरी हो गल बा 11 बजे में 15 मिनट कमती बा हमनी के प्रोग्राम 11 बजे तक चली और अभी तक आप साथ देते हवा आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जितना फरमाइश रहल उ सब पूरा करे के हमार आज पूरा कोशिश रहल। आशा करत है जा आज के प्रोग्राम आपके पसीना हमेशा की तरह कल फजर के हमने फिर मिलब जा और अपन ख्याल रखिया सर्दी के मौसम बा और साथ में अपन सुरक्षा की भी ख्याल रखिया। घर द्वार अच्छा से बंद करके रखिया। कुंवारी सब खातिर नहीं खोलिया जेके नहीं जनबा तो ओकर से बात ही नहीं करा। घर में आने के तक कोनो सवाल ही नहीं पैदा हुएला और शुरू जहाँ अपन फाटक ही बंद कर दे सब कोई खातिर खाली परिवार अपन परिवार के घर में आनिया और कोई के नहीं। आपके सुरक्षा सबसे बड़ा बात बा। देखत है जा कि आज का समय जो चलता काफ़ी खराब समय चलता लोतो में भी जेबा तो अपन सुरक्षा के ख्याल रखते हुए अच्छा से लोतो के बंद करके चलिया। इधर उधर कोनो समस्या रही तो उस समस्या में उलझिया नहीं और ये सब बात के जो ख्याल रखबा तो आपके सुरक्षा के भी ख्याल रही। और अभी जे आप नींद में जाता हुआ तो यही आशा बा कि आज के नींद आपके बहुत अच्छा रही। अच्छा अच्छा विचार करके अच्छा अच्छा संकल्प करके आप सुते जा ताकि उस सब संकल्प सच्चाई में बदली सिद्ध होई और काल फजर के एगो नवा जिंदगी की शुरुआत होई। आप सब कोई के नमस्ते शुभ रात्रि।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: वेल दोस्तों, जो बीत गया वो कल था, जो याद रह गई वो सुनहरे पल हैं। दोस्तों आइए मिलकर सुनते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे गीत जो आज भी दिल को धड़कनों में बसा देते हैं। बिल्कुल जी, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम। सभी लोगों का स्वागत है रेडियो मॉरिशस पर।

यादों के पन्नों को आज फिर से खोलते हैं, क्या ख्याल है आपका? कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं और कुछ लम्हे फिर से जी लेते हैं, क्या ख्याल है आपका मेरी जाना? एक्चुअली देखा जाए हर एक गाने के साथ आपकी होंठों पर मुस्कुराहट हम लेकर ही आ जाते हैं और हम तो चाहते हैं कि बस आराम से आप बैठ जाइए और हमारा साथ दीजिए इस खूबसूरत से सफर में। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

सुरों का सफर जब पुरानी यादों से मिलता है ना दोस्त, अब दिल खुद ब खुद मुस्कुराने सा लग जाता है। और इसी मुस्कुराहट को लेकर हम आ जाते हैं हर एक गाने के साथ, कुछ गाने जो आपके दिल के ये बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, जो आपकी यादों को फिर से ताज़ा कर लेते हैं। तो बस तैयार हो जाइए अपनी यादों में फिर से खो जाने के लिए।

दिल से निकले गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, बिल्कुल दिल से निकले गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, और मोहब्बत से भरे लफ्ज कभी बेगाने नहीं होते हैं। आइए दोस्तों, आज इस महफिल को और भी सजाते हैं इन खूबसूरत गानों के साथ। तो चलिए जी, ये अगला गाना आपके नाम।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: yes!

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है, इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं, ये पढ़ा और सुना था। पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।